ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है श्री गणेश मीमांसा, आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
2: प्रभु सम्मत शास्त्र होने के कारण वेद हिंदू जाति के लिए स्वतः प्रमाण है। धर्म और अध्यात्म ज्ञान के विषय में वेद अंतिम प्रमाण है, अर्थात जिस वस्तु या पदार्थ का अस्तित्व वेदों ने जिस रूप में स्वीकार किया है उसको उसी रूप में मानना अपने धर्म में निष्ठा रखने हिंदू मात्र के लिए अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग वेदों के केवल संहिता भाग को ही वेद मानते हैं, परंतु हम तो मंत्र ब्रह्मण्योर्वेद नामधेय अर्थात वेदों का मंत्र भाग और ब्रह्म भाग दोनों ही नाम वेद है, इस प्राचीनतम पद्धति को ही स्वीकार किया जा सकता है जिसके अनुसार ब्राह्मण अर्थात आरण्यक और उपनिषद भी वेद के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारे कृत्यों में दैविक या पैतृक कृत्यों में सबसे प्रथम श्री गणेश जी का पूजन होता है, ये गणेश जी क्या वैदिक देवता हैं या नहीं? उनके कई नामों में से कुछ नाम वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों या उपनिषदों में आए हैं अथवा नहीं, अतः सबसे पहले उनके नामों का ज्ञान होना आवश्यक है। गणेश जी के आगे बताए जा रहे 35 नाम पुराणों से आए हैं। विनायक, मधुत्कट, भालचंद्र, गजास्य, गणक्रीड, गिरजासुत, दुर्मुख, पाशपाणी, गणेश, गणजय, गजस्कंद, विघ्न विनाशन, गणनाथ, हेरम्ब, धराधर, विघ्नहर, वक्रतुंड, मंगलमूर्ति, एकदंत, क्षिप्रसादन, मयूरेश, धूम्रकेतु, आमोद, प्रमोद, बुद्धिश, सिद्धिदायक, उमापुत्र, गणेश्वर, विघ्नहर्ता, गजकर्ण, निधिप, ईशवंदन, विघ्नहर्त, कपिल और विकट। इस प्रकार नारद पुराण में भी संकट नाशन स्तोत्र में गणेश जी के 12 नाम दिए हैं। वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति, गजानन। इसी प्रकार से स्कंद पुराण में भी श्री गणेश जी के 48 नामों का उल्लेख है। गणेश पुराण के पढ़ने से पता चलता है कि गणेश जी प्रत्येक युग में अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न रूपों में रखते हैं। तात्पर्य, सत्य युग में विनायक सिंह वाहन और 10 भुज थे, त्रेता में मयूर वाहन और 6 भुज थे, द्वापर में गजानन चतुर्भुज और रक्तांग थे, और कलयुग में श्वेत वर्ण और 2 भुज है। यहाँ ये भी विचारणीय है कि द्वापर से पहले युगों में विनायक नाम का प्रयोग किया गया है, द्वापर में गजानन कहा गया है, कलयुग में सर्वसिद्धि देने वाले कहा गया है। यह तो हम स्वीकार कर चुके हैं कि श्री गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। विनायक का अर्थ है विशिष्ट नायक। श्री गणेश जी का वर्णन करते समय प्रसंगवश उनके वाहन चूहे का भी वर्णन सामने आता है। गणेश जी को मूष्क वाहन और आखुस्त भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने पहले चर्चा की, कृत युग में विनायक सिंह वाहन थे, त्रेता में मयूर वाहन बने, इसी प्रकार द्वापर और कलयुग में गणेश जी मूषक वाहन बने। कहा जाता है कि एक बार श्री गणेश जी के साथ गजमुखासुर नामक दैत्य का युद्ध हुआ, उसने गणेश जी का दाहिना दांत तोड़ दिया। अब गजानन ने क्रुद्ध होकर उस टूटे दांत से उस दैत्य पर ऐसा प्रहार

0: किया कि वह घबराकर विशालकाय चूहे का रूप धारण करके भागा, परंतु गणेश ने उसे पकड़ लिया और अपना वाहन बना लिया। तब से चूहा उनका वाहन बन गया। इस प्रकार से वेदों से लेकर आज तक श्री गणेश हमारे पूज्य हैं और वे हर शुभ कार्य के लिए पुकारे जाते हैं। आइए हम भी प्रातः वेला में उन्हें पुकारें और आज के पूरे दिन को हम शुभ और मंगलमय दृष्टि से देखते हुए अपनी जीवनचर्या का पालन करें।
1: अभी आप सुन रहे थे, आज का विचार विषय था श्री गणेश मीमांसा। आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोह संख्या 175 से दोह संख्या 177 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन
1: योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
2: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: Thank you, namaste. And we can see that the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Governor of West Bengal, Shri Ravindra Narayan Ravi, and the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, have arrived at the iconic Red Road. And the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
4: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
2: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
5: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।

0: पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर.एन. रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागर।

0: a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
1: Rajpal Sri R N Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने

योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better.

we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी

0: जानकारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
2: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
3: हम सब
2: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच

0: And the Honourable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area, and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here. And he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road. And we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
2: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है. मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है.
1: जी,
2: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है. और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं. और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं.
1: जी,
2: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है. क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है, उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है.
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया. हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है. ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
2: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से.
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं.
0: Guruji, Munish Sharma ji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है. मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है. और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो.
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में.
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना. अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं. इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना. जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है. इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं. तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं,

0: किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप योगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसा जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है।
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटैलिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी।
3: yes,
1: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है, और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये

0: फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
2: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: Ji, yahan par abhi पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her

0: ever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आसन हैं और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए और सभी अपने अपने स्थान पर निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए अब धीरे-धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए और प्रतिमा जी जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है और जो हमारी पंचवायु कही गई है प्राण अपान समान उदान व्यान इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
1: जी और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं उनके सामने योगाभ्यास करते हैं जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव बेहद सुंदर ये दृश्य कौशिक जी
0: यस एब्सोल्युटली एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner and this is just as you rightly mentioned how an elder of the family takes care of the youngsters the honorable prime minister is doing absolutely just that
1: ji and now yahan about this asana abhyas kiya ja raha hai shashakasan ka khargosh की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है शशांक आसन भी बोलते हैं उसको उसके बाद उत्तान मंडुकासन शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन ये स्पेशली लेडीज के लिए फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये
1: जी और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है हमारे लिए कठिन है तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है

0: वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है.
1: नाउ आई थिंक द एंथुसियास्ट परफॉर्मिंग वक्रासन.
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है आसन, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है.
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है. और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है. तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है. साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये.
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं. अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है. हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है. तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले. मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं. और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन. यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं. भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है. इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे. ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है. साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है. स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है. ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है. और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है. यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं.
0: जी गुरु मुनेश सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं. आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
3: जरूर जरूर. एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम

0: बच्चे से ही बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है। और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी।
2: और पवन मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
1: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
0: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
1: जी।
0: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस

0: फिटनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपनी कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इन्हेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
3: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधन, योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
2: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
3: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
2: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल

0: सहायता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शन

0: हैं इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं, उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इन का सिक्रीशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें निकालते
0: हैं। बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी,
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान के सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें, मेरी खुद की लाइफ बताऊँ कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना, शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे
1: इसकी
4: धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि

0: ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुँचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
1: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein jahan jahan Bharatiya dutawas hain unki or se vishesh ayojan honge aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से

0: अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास। इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है। इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान, तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन

0: आयोजन होते रहे हैं इन दिनों। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं। हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डम

0: भूमध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयर लिनस्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख

0: में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी

0: शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
2: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंटरनेशनल योगा डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टुडे। Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG

0: संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, पहला सुख निरोगी काया। और आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, या कहूँ इस दौर में, काया को स्वस्थ रखने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम चर्चा करेंगे स्वस्थ जीवन के लिए योग पर। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है। योग पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं योग गुरु दीपक शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: दीपक जी, देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में यही आता है कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है।
2: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये छिपा है कि जब 2014 के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यूएन में जब गए थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संपूर्ण विश्व है वो योग की शरण को अपनाएं, योग को अपनी जीवन शैली में आत्मसात करें, तो इसको लेकर यूएन ने है उसे मंजूरी दी और 177 देशों ने इसका समर्थन किया। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई और इस वर्ष हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे।
1: जी बिल्कुल, भारत का अनुसरण करते हुए पूरा विश्व जो है वो योग को अपना रहा है और यूं कहूं कि विश्व पटल पर हमारा नाम जो है योग के कारण भी छाया हुआ है। और 2026 में जो हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मना रहे हैं, इसकी क्या थीम है और इसकी क्या प्रासंगिकता है?
2: इस वर्ष की जो थीम रखी गई है 2026 की, वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। यानी कि इसमें सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस थीम को रखा गया है कि बच्चों के लिए भी इसमें बात होगी, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बात होगी, क्योंकि हमें पता है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो योग कहीं ना कहीं हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही और हमारा जो जोश है वो भी मेंटेन रखता है। और इसको कहीं ना कहीं ये बात की जाए कि इससे आपका सर्वांगीण विकास संभव है।
1: हेल्दी एजिंग, इस शब्द से क्या पर्याय है?
2: हेल्दी एजिंग का तात्पर्य ये हो गया कि स्वस्थ रहने के लिए, चाहे आपकी आयु कितनी भी हो, आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपकी आयु अगर 60 प्लस भी है लेकिन उस 60 प्लस में भी आप बीमारियों से मुक्त यानी रोग मुक्त जीवन की अगर आपको चाहत है तो आपको योग को आत्मसात करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अब यदि हम आपसे कुछ विस्तार से जानना चाहें योग के बारे में, तो योग को हम केवल व्यायाम नहीं कह सकते। आपने पहले भी कहा जैसे जीवन शैली के अंदर इसे अपनाना होगा, तो योग की क्या भूमिका है हमारे लिए एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को देखते हुए?
2: स्वस्थ जीवन की परिकल्पना, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि आजकल भाग दौड़ भरी दिनचर्या में व्यक्ति अपने शरीर को समय नहीं दे पाता है
1: जी।
2: क्योंकि पहले हम देखते थे कि लोग खेती करते थे, आजकल शारीरिक श्रम का अभाव है, लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आज एकमात्र जो ऐसा जरिया है जिनसे हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें वो योग ही है, क्योंकि इसमें आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, रोग मुक्त भी शरीर होगा और इससे आपका जो मन है वो भी आनंदित रहेगा। क्योंकि आज वर्किंग प्रोफेशन की बात की जाए या फिर बच्चों को पढ़ाई का तनाव हो, तो किसी भी परिस्थिति में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग से आपके जीवन के जो सभी पहलू है वो इससे स्वस्थ रहते हैं।
1: जी बिल्कुल, निश्चित ही भागदौड़ भरी जो हमारी जीवन शैली है उससे योग से एक ठहराव आ सकता है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर तन स्वस्थ है तो मन अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो विभिन्न आयु वर्ग का आपने जिक्र जैसे किया, बच्चे, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक जो हैं, हमारे हेल्दी एजिंग की हम बात कर रहे हैं, योग निश्चित ही इन सभी को लाभान्वित करता है। इसे अपनाने का क्या कोई सही समय हो सकता है?
2: देखिए, जैसा आपने बताया कि सभी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हो और सबसे अच्छा समय तो मैं कहता हूं कि आज का ही दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हम एक संकल्प ले सकते हैं। योग दिवस मनाने के पीछे कहीं ना कहीं एक ये भी तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को आज के दिन योग की शुरुआत करनी है तो वो आज से ही अपनी योग की यात्रा को आरंभ कर सकता है। और योग कहीं भी किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बारीकियों को आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे इसकी जो शुरुआत है अगर आप सुबह के वक्त करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है। आयु वर्ग की बात की जाए तो अगर हम छोटी अवस्था में अपने बच्चों को आत्मसात करें योग को अपनाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इससे बच्चों में लचीलापन बढ़ेगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, लंबाई को बढ़ाने में सहायक है, बच्चों में आँखों की कमजोरी नहीं होगी। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा शब्द का ही अर्थ क्या होता है कि युवा का उल्टा करते हैं तो वायु, तो युवाओं के अंदर अगर वायु जैसा वेग को प्रतिस्थापित करना है तो उन्हें योग की शरण में आना होगा। महिलाओं के लिए भी लाभदायक है काफ़ी, और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए चूंकि इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे दवाइयाँ भी उनकी शुरू हो जाती है, तो अगर आपको दवाइयों से दूरी बनानी है, दवाइयों को छोड़ना है, तो अगर आप योग और इसके साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम से आपका जो आंतरिक शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो सभी आयु वर्ग के लिए लाभदायक

0: योग है।
1: बिल्कुल सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो महिला श्रोता हमें सुन रही हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस करते हुए उनका शरीर जो है वो कहीं पीछे छूट जाता है, वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, योग को अपनाने से वो किस तरीके से लाभान्वित हो सकती हैं?
0: देखिए, जैसा कि कहा गया है कि शरीर माध्यम कलु धर्म साधनम, यानी सब धर्मों को जो साधने का माध्यम है वो आपका शरीर है। इसलिए महिलाओं का शरीर को स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये स्वस्थ होगा तो समाज को अपने कार्यस्थल पे और अच्छा बेहतर साबित कर पाएगी। तो इसके लिए मैं आपको, जैसा आपने बताया कि पीसीओडी की समस्याएं महिलाओं में आम हो गई है, हार्मोन इनबैलेंस की अगर बात की जाए तो योग इन सब में संतुलन स्थापित करता है। अगर आप नियमित रूप से भद्रासन यानी बटरफ्लाई का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ा कपालभाति करें, कैट एंड काउ पोज करें, तो इससे महिलाओं को जो पीसीओडी की समस्या है उनसे भी राहत मिलती है। तो काफ़ी लाभदायक है ये महिलाओं के लिए भी।
1: जी बिल्कुल, हमने बात करी स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की। क्या योग मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है? नियमित योगाभ्यास से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी दीपक जी क्या समाधान होता है?
0: बिल्कुल होता है। आज की जो जीवन शैली, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ये मिलता है कि लोग शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है, यानी मन अशांत है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, तो इनके लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। योग से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इससे कम होता है, आपका सर्वांगीण विकास होता है, और इसके साथ साथ चूंकि अगर आपकी श्वास से संतुलित है, श्वास पे अगर हम ध्यान केंद्रित करने लग जाएं, मैं सभी को बताना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से कि यदि आप कभी भी तनाव महसूस करें तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करके और अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। एक दो मिनट आप ऐसा करने से ही देखेंगे कि आपका मन है वो आनंदित होने लगेगा, आपकी श्वास से संतुलित होने लगेगी, और जब ये होगा तो जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हैप्पीनेस के लिए, और योग से हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हैप्पीनेस होने के परिणाम स्वरूप हमारा जो तनाव है वो भी गायब हो जाएगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी हमारे श्रोताओं को बताया कि योग से हमें अल्टीमेट जो हमें हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, जो खुशी चाहिए, जो हम सारे अभ्यास प्रयास करते हैं वो किसके लिए है, कि आखिर में हम उस खुशी तक पहुंच सकें, तो आखिर में नहीं, उसकी आप शुरुआत से शुरुआत करें और योग को अपनाएं। अभी आपने हमें बताया कि मानसिक स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से बेहतर होता ही है योग से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है अमूमन सभी लोगों की, हमारी, हम नियमित दिनचर्या के अंदर व्यायाम को शामिल नहीं करते हैं, योग को शामिल करें, ऐसा आपका कहना है। तो जीवन शैली से जुड़ी यदि बीमारियों की हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, मोटापे को नियंत्रण करने में किस प्रकार योग मदद करता है?
0: देखिए, काफी लोगों की भ्रांति रहती है कि योग से क्या मोटापा भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि योग शब्द का अर्थ क्या हो गया कि संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। मेरा ये परिभाषा ऐसी मानना है, क्योंकि जब आपके जीवन में संतुलन होगा, अब संतुलन की बात की जाए तो आपका शरीर का वजन का भी संतुलन रहना चाहिए, आपके मन का विचारों का भी संतुलन रहना चाहिए, आत्मा का परमात्मा के मिलन की बात हो, यानी संतुलन स्थापित करने में योग की एक महती भूमिका है। योग से जो लाइफ स्टाइल डिजीज जुड़ी हुई है, जैसे मोटापे की बात की जाए, मोटापे के साथ साथ जिनका वजन कम है उनके लिए भी लाभदायक है, यानी अंडरवेट और ओवरवेट दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए, थोड़ा कपालभाति किया जाए, थोड़ा आहार का विशेष ध्यान रखा जाए, तला फला न खाएं, है ना, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं आप सुबह सुबह, तो निश्चित रूप से आपका मोटापा भी कम होगा। और दूसरी बात की जाए आज की भागदौड़ जीवन शैली में, कि हम देख रहे हैं कि आज हर घर के अंदर डायबिटीज के मरीज है, ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है।
1: बिल्कुल,
0: तो ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं कारण जुड़ा हुआ है, वो तनाव से भी जुड़ा हुआ है, चिंता से जुड़ा हुआ है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो श्वास से संतुलित रहेगी, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कीजिए, इससे आपका तनाव कम होगा, और जब तनाव कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। शुरुआत आप 5 मिनट से कीजिए, अनुलोम विलोम नियमित रूप से आप सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम करके देखें, आपका ब्लड प्रेशर 5 मिनट में ही कंट्रोल में आ जाएगा। बिफोर और आफ्टर आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा उचित जो अभ्यास मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो मंडूक आसन होता है, एक वक्रासन। वक्रासन की खास बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो योग दिवस का प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है भारत सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा, उसमें वक्रासन को भी शामिल किया गया है ताकि मधुमेह से निजात मिल सके। और थोड़ा आहार का भी हम ध्यान रखें, खीरा करेला टमाटर का सेवन करते हैं तो मधुमेह को हम निजात दे सकते हैं।
1: बहुत बखूबी आपने हमें ये कुछ सरल योगासन के नाम कहे, हालांकि इसके लिए हमें किसी योग गुरु का परामर्श या फिर जो एक्सपर्ट हो उसके एक्सपर्टीज के अंदर ही योग का अभ्यास करना चाहिए।
0: बिल्कुल करना चाहिए, आपको योग विशेषज्ञ की सलाह के पश्चात ही, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो एक

0: बार योग विशेषज्ञ की देखरेख में आप करें तो ज्यादा लाभदायक होगा।
1: एक सवाल दीपक जी हमारे मन में ये रहता है कि हम योग विशेषज्ञ से सलाह कर ली, कुछ समय उनके पास चले गए, लेकिन निरंतरता जो है वो नहीं बन पाती है योग के अंदर। तो ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो योग को निरंतर रूप से अपनाएं?
0: देखिए, ठीक उसी प्रकार से कि जब हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार से भी आपको ये एक जीवन शैली कहेंगे। तो मैं योग दिवस पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज ही आप संकल्प लें कि योग सिर्फ एक दिन का नहीं है अपितु जीवन पर्यंत, यानी जब तक हमारा जीवन है हमें एक जीवन शैली में इसे एक अंग के रूप में अपनाना होगा। जैसे रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही आपको योग को भी समय देना है। आप चाहे इसकी समय थोड़ा दे सकते हैं कि आपने शुरुआत 30 मिनट से की, 45 मिनट करें, अगर आप एक घंटा शरीर को देंगे तो 23 घंटे शरीर आपको देगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ये आप इसे आत्मसात करें।
1: एक घंटा यदि आप योग को देंगे तो 23 घंटे जो है वो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। ये आपने श्रोताओं को हमारे बहुत ही बखूबी बताया और

0: खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार से भी आपको ये एक जीवन शैली का अंग है। तो मैं योग दिवस पर आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज ही आप संकल्प लें कि योग सिर्फ एक दिन का नहीं है अपितु जीवन पर्यंत, यानी जब तक हमारा जीवन है हमें एक जीवन शैली में इसे एक अंग के रूप में अपनाना होगा। जैसे रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही आपको योग को भी समय देना है। आप चाहे इसकी समय थोड़ा दे सकते हैं कि आपने शुरुआत 30 मिनट से की, 45 मिनट करें। अगर आप एक घंटा शरीर को देंगे तो 23 घंटे शरीर आपको देगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ये आप इसे आत्मसात करें।
1: एक घंटा यदि आप योग को देंगे तो 23 घंटे जो है वो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संतुलन ही योग है और असंतुलन ही रोग है। ये आपने श्रोताओं को हमारे बहुत ही बखूबी बताया। और योगाभ्यास करते समय हम किन सावधानियों का ध्यान रखें यदि हम योग विशेषज्ञ के सानिध्य में योग नहीं कर रहे हैं तो?
0: देखिए, सावधानी की जहां तक बात की जाए ये लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण है
1: जी,
0: क्योंकि योग करने से पहले हमें इसमें क्या प्रिकॉशन यानी सावधानी रखनी है उसका हमें पता होना चाहिए। देखिए, योग जब भी करें आप खाली पेट करें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आप पानी पी के गुनगुना, फ्रेश होने के बाद ही योगाभ्यास करें। और इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि जिस वातावरण में आप योग कर रहे हैं वो खुद वातावरण स्वच्छ है या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कहीं गंदगी का ढेर लगा है और उसके आसपास हम योग कर रहे हैं। योग खुले वातावरण में करें तो ज़्यादा उचित है। और योग करने से पहले आप दरी या योगा मैट पर ही योगाभ्यास करें तो ज़्यादा उचित है। ढीले वस्त्र पहने जिसमें आपका शरीर है वो आरामदायक महसूस करें, ऐसे वस्त्र पहन के ही आप योगाभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई ऑपरेशन या सर्जरी हो रखी है तो आप इसमें सावधानी बढ़ते हैं, यानी आप इसे धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। एक दिन में नहीं होगा अभ्यास, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस संकल्प को चरितार्थ करते हुए आपको योगाभ्यास को करना चाहिए।
1: बिल्कुल दीपक जी, अंत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि योग एक व्यक्ति के लिए नहीं अपितु एक समष्टि के लिए, यानी अगर योग करेंगे आप तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, एक डॉक्टर की बात की जाए, किसी भी विषय में आप जुड़े हुए हैं उसमें आपकी वो कुशलता बेहतर होगी। क्योंकि कहा गया है कि योग कर्मशु कौशलम, योग से हमारे कर्मों में कुशलता बढ़ती है। और कर्मों में कुशलता तब बढ़ेगी जब हम योग को अपनी जीवन शैली में आत्मसात करेंगे। अगर ये आत्मसात होने लग गई तो आप देखेंगे कि आपका जीवन का है वो कायाकल्प हो जाएगा। आपका आचार विचार, वाणी व्यवहार, स्वभाव, ये सब है उसमें बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत आप थोड़े से करें, कुछ मिनटों से करें और फिर एक घंटा अपने जीवन शैली में योग को आत्मसात करें। बहुत फायदेमंद है, इससे आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संभव होगा।
1: बिल्कुल, तो एक घंटा जरूर समय निकालें और योग को अपने जो दिनचर्या है उसमें आत्मसात करें। श्रोताओं, आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि योग स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की कुंजी है। नियमित योगाभ्यास से न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। योग गुरु दीपक शर्मा जी, आप आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता स्वस्थ जीवन के लिए योग विषय पर। श्री दीपक शर्मा से बातचीत कर रही थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास। संयोजन किया था श्री अमित सिंह ने। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए, आज हम सुनते हैं हरिहरन की गाई कुछ गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट। और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा। समाचार

0: आपके साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबू राज में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समारोह में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग अब एक विश्वव्यापी जन आंदोलन बन गया है। योग न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है बल्कि विश्व को जोड़ने का काम भी कर रहा है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग अपनाने का आह्वान किया।
2: योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे ही योग आज विश्व को भी जोड़ रहा है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ भी अनगिनत है। ये शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आधुनिक विज्ञान भी आज योग की महत्ता को स्वीकार कर रहा है।
0: इधर बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीवन में योग को अपनाने से न केवल बीमारियों से बचाव संभव है बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन पद्धति भी है।
3: योग को अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाए हम सब। योग से ही जीवन के सारे रोग दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने की एक पद्धति बन सकती है योग। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर पहुंचाया, वैसा ही योग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर पहुंचाया है।
0: आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्रा सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कल मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए

0: यह अभ्यास किया गया एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जा रहेगी जिसमें 2,279,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफार्म पर रोक लगाई गई है यह रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी इधर प्रदेश में रीनीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर करीब 209,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं नीट परीक्षा को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय किया है रेल प्रशासन का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक समय पर सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है इसके तहत जोधपुर मंडल पर 3 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है परीक्षा के सफल संचालन के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक और सिटी कोऑर्डिनेटर तैयार किए गए हैं कोचिंग सिटी कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने नीट परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दें पुलिस ये परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है
1: मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि किसी भी तरीके की भ्रामक पोस्ट पर किसी भी तरीके के लालच पर किसी भी तरीके के ऐसे दावे पर कि उनके पास कोई नीट का पेपर है आप विश्वास ना करें और अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास आती है तो कोटा शहर पुलिस के विभिन्न स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं कैप्शन में उन पर जरूर हमें सूचित करें कोटा शहर पुलिस आप सभी के लिए काम करने के लिए और एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में ये एग्जाम हो उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है आप सभी को एक अच्छे एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज इनका अनावरण करेंगे इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर श्री राठौड़ का मनोनयन किया गया है और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश के दौरे पर विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात देंगे नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा आज निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट और देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का आज अनावरण होगा इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
2: ये आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार
3: श्रोताओं नमस्कार असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया जिसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर

0: दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नरजारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
1: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमुरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमुरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
0: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
2: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गाँव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूक फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
0: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
1: हमने सबसे पहले गाँव गाँव के महिला को जाकर सहायता किया, SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए, और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
0: सनकदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
2: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गाँव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है, महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें हर, जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में, अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गाँव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन भी बनाए हैं और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था, फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पॉल्यूशन होता है उससे उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस LPG यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है, हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर्ड ही है।
0: गीतांजलि, एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
1: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है, SHG ग्रुप है, SHG ग्रुप को हम लोग को गांव-गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
0: और सनकदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
2: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें, तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
0: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
2: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया, वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है, तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ऐसे करके हमारे गाँव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
0: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे

0: आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
1: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था, कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
0: समरदान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
2: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं, और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गाँव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
0: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियां संचालित हुई?
2: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गांव में।
0: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
2: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट्स है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
0: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुंचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
2: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गाँव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं। और उसके साथ ही जिन जगहों में गाँव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं, और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी, या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
2: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं और हमें यह बात समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है, इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं, वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
0: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
2: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि

0: कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है?
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है, इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
0: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है। हमने पेपर वर्क, फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गाँव है। विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो पीए आए है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है। क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से, जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहाँ पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से, जो भी बदलाव वहाँ पर देखा जा रहा है, इससे वहाँ के जो लोग हैं, सभी लोग, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है, तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है। पंचायत के प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं।
2: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गाँव के आसपास जितने भी घर है उन सब में अभी भी, जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गाँववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे। हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाएं तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती जमाली देवी का गाया हुआ ये लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना श्रीमती जमाली देवी का गाया हुआ ये लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। समय मिलाना चाहें तो मिलाइए, सुबह के ठीक 9:30 और 3 सेकंड हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम मुकुल, और आज का कार्यक्रम लेकर आई हैं श्रीमती नेहा गोस्वामी।

जय हिंद प्यारे बच्चों, रविवार की सुहानी सुबह हो, छुट्टी का दिन हो, नन्हे कदमों की धमा चौकड़ी हो, खिलखिलाती हंसी हो, चॉकलेट की छोटी सी जिद हो, झूले की फरमाइश हो और उन सारी प्यारी जिदों को मुस्कुरा कर पूरा करने वाले पापा हों, तो सचमुच दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे नटखट नटखट मुस्कुराते हुए दोस्तों, मैं आपकी अपनी

नेहा दीदी लेकर आ गई हूँ आपका अपना बच्चों का चहेता कार्यक्रम मुकुल। प्यारे बच्चों, आज का रविवार वैसे भी खास है, लेकिन आज की सुबह अपने साथ एक और खूबसूरत वजह लेके आई है। आज है फादर्स डे, यानी पापाओं को प्यार और धन्यवाद कहने का दिन, जो हमारी छोटी छोटी खुशियों में अपनी बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी कितनी सारी फरमाइशों का पता पापा को पहले से ही चल जाता है? हम कुछ कहें उससे पहले ही वे समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। कभी आइसक्रीम की जिद, कभी साइकिल दिलाने की जिद, और कभी बस उनके कंधों पर बैठकर दुनिया देखने की जिद। और पापा भी कितने मजेदार होते हैं ना। कभी घोड़ा बनकर पूरे घर में घुमाते हैं, कभी पढ़ाई के समय शिक्षक बन जाते हैं, तो कभी छुट्टी के दिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त। कई बार तो ऐसा लगता है कि पापा के पास हर समस्या का हल होता है। खिलौना टूट जाए, साइकिल की चेन उतर जाए, या फिर कोई मुश्किल सवाल समझ ना आए, हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है पापा। प्यारे बच्चों, पापा का प्यार थोड़ा अलग होता है। वे शायद मम्मी की तरह बार बार दुलार ना करें, लेकिन जब हम गिरते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उठाने के लिए हाथ भी वही बढ़ाते हैं। और जब हम छोटी सी कोई समस्या या में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी ही आंखों में चमक आती है कि तुम ज़रूर सफल होगे। कभी मेले में कंधों में बिठाकर भीड़ में ऊपर से दुनिया दिखाना, कभी पतंग उड़ाना सिखाना, कभी छुट्टी वाले दिन हमारे साथ खेलना, और कभी हमारी नटखट शरारतों पर चुपके से मुस्कुरा देना, यही तो है हमारे पापा। तो बच्चों, फादर्स डे के इस खास अवसर पर अपने पापा को एक प्यार भरी झप्पी देना मत भूलिएगा, और उनसे ज़रूर कहना, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। और अब मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज के मुकुल में आगे भी होंगी ढेर सारी प्यारी बातें, रोचक जानकारियां, और पापा के नाम ढेर सारा प्यार, और पापा के नाम हमारे प्यारे प्यारे गीत भी।

प्यारे बच्चों, पापा की बात चल ही रही है तो मन में एक बहुत प्यारी तस्वीर उभर आती है। सुबह की हल्की हल्की धूप हो, पेड़ों की पत्तियों पर धूप की चमक हो, चिड़ियों का मधुर कलरव हो और तभी कानों में एक अपनेपन भरी आवाज़ सुनाई पड़े, उठो मेरे चैंपियन, नई सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कितना सुंदर लगता है ना। कभी पापा उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, कभी साइकिल का संतुलन बनाना और कभी जीवन में संतुलन बनाए रखना। बचपन में शायद हमें ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, समझ आता है कि पापा हमें सिर्फ चलना नहीं सिखा रहे थे, वे हमें आगे बढ़ना सिखा रहे थे। और शायद यही कारण है कि आज का दिन इतना खास लगता है, क्योंकि आज हम उन सभी पिताओं को धन्यवाद कर रहे हैं जो हमारी हर मुस्कान के पीछे चुपचाप खड़े रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और सोचिए, योग और पापा में इतनी समानता है। योग हमें संतुलन सिखाता है और पापा हमें जीवन का संतुलन सिखाते हैं। योग हमें मजबूत बनाता है और पापा हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। योग हमें गहरी सांस लेना सिखाता है और पापा मुश्किल समय में हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। पता है बच्चों, कई घरों में छुट्टी के समय सुबह एक प्यारा सा दृश्य देखने को मिलता है। बताओ क्या, बताओ बताओ। अरे पापा कहते हैं, चलो बेटा आज भी हर रोज की तरह योग को थोड़ा अलग अंदाज में एंजॉय करते हैं। फिर कोई ताड़ासन करते हुए हंस पड़ता है, कोई वृक्षासन में डगमगा जाता है और आप ही जैसा कोई प्यारा बच्चा अपनी ही मस्ती में खिलखिला भी उठता है। वहां केवल योग नहीं हो रहा होता, वहां प्यार, अपनापन और खूबसूरत यादें भी बन रही होती हैं। सच तो ये है बच्चों, बड़े होकर हमें योग के आसन याद रहें या ना रहें, लेकिन पापा के साथ बिताई गई वे सुनहरी सुबहें, वह उंगली थाम कर पार्क तक जाना, वह प्यार से डांटना, वह हौसला बढ़ाना और वह मुस्कुरा कर कहना, मुझे तुम पर गर्व है, ये बातें हमेशा दिल में बसी होती हैं। तो आइए आज के दिन, इस अनमोल दिन पर हम दो खूबसूरत संकल्प लें। पहला, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, और दूसरा,

अपने पापा को ये एहसास दिलाएंगे कि वे हमारे लिए कितने खास हैं। अपने पापा से ये कहना मत भूलिएगा कि पापा, आपकी उंगली पकड़कर चलना मेरी सबसे खूबसूरत यादों में एक है। आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। और अब हमारे पास भी खजाना पापा के नाम अनगिनत गीतों का, तो लीजिए उस खजाने के सुरमे गीत आप भी लूटिए।

बच्चों, होता है ना कि हम अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों में खो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उन खुशियों के पीछे पापा ने कितने त्याग किए होंगे। कई बार वे अपनी ज़रूरतें टाल देते हैं ताकि हमारे सपनों में कोई कमी ना रहे। पिता का प्यार शोर नहीं करता बच्चों, वह चुपचाप हमारे लिए जीता है। ऐसे ही एक पिता के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावुक कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं कहानी अनमोल सीख और जूतों की जोड़ी। एक छोटे से शहर में रहने वाले अमित के पिता रामदीन एक साधारण दर्जी थे। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन रामदीन की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे अमित के सभी शौक पूरे कर सकें। फिर भी उन्होंने अमित को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अमित अक्सर अपने पिता को फटे हुए जूतों में सिलाई करते देखता था। एक दिन अमित ने उनसे पूछा कि पापा, आप हमेशा पुराने जूतों को ही क्यों पहनते हो, नए क्यों नहीं ले लेते? रामदीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, इन जूतों को सिलाने से जो पैसा बचता है ना, उनसे मैं तुम्हारी किताबों की फीस भर देता हूँ। मेरे जूते तो अभी और चल जाएंगे। इन शब्दों ने अमित के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। सालों बीत गए और अमित एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह अपने पिता के संघर्षों को पीछे छोड़ आया था। एक दिन जब अमित अपने पिता के घर वापस आया तो उसने अलमारी में अपने पिता के वही पुराने कई बार सिले हुए जूते देखे। उसे अपने पिता का वह पुराना जवाब याद आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अब आप वो पुराने जूते नहीं पहने।

लेंगे। अब मैं आपके लिए सबसे अच्छे ब्रांड के जूते लेकर आऊंगा। रामदीन ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोले, बेटा मेरे जूतों की कीमत तो तुम अब चुका रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पैरों पर खड़े होना जो सीख लिया है। एक पिता के लिए इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। बच्चों, कहानी का सार बस इतना है कि पिता अपने सुख और आराम का त्याग करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। उनका प्यार भले ही शब्दों में बयां ना हो, लेकिन उनके हर काम में झलकता है। जैसे कभी वे अचानक तुम्हारी पसंद की कलर किट या क्रिकेट बैट और गेंद ले आते हैं, तो कभी शाम को तुम्हारी पसंद की चाट, आइसक्रीम या कोई स्वादिष्ट चीज खिलाने बाहर ले जाते हैं, और जब तुम किसी बात से उदास होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी करते हैं। तो बच्चों, आज फादर्स डे पर अपने पापा को दिल से ये जरूर कहिएगा कि पापा, आप मेरे लिए बहुत खास हैं, कुछ इस अंदाज में।

अच्छा बच्चों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि घर पर अगर कोई हमारी शरारतों पर मुस्कुरा देता है, घूमने चलने की फरमाइश सुन लेता है या कभी कभी हमारी छोटी सी जिद भी पूरी कर देता है, तो उनमें पापा का नाम जरूर आता है। कई बार वे सख्त भी लगते हैं, लेकिन उनकी डांट में भी हमारी भलाई ही छिपी होती है। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी भी उन्हें ही होती है। तो चलिए ऐसे ही प्यारे और स्नेहमय पापा को समर्पित एक सुंदर कविता सुनते हैं। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जाने का जग जिससे वो पहचान है पिता। कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता, माँ अगर पैरों में चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी, तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है, तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पर गहने, तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। असल में बच्चों, पिता का प्यार अक्सर शब्दों से कम और एहसासों से ज़्यादा समझ में आता है। उनकी सीख, उनका स्नेह और उनका साथ जीवन भर हमारे साथ रहता है। और अब इसी सुंदर भावना के साथ पापा के नाम एक और सुंदर गीत।

0: अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि योग और पापा में क्या समानता हो सकती है? पहली नज़र में तो दोनों अलग लगते हैं। एक तरफ योग जो हमें स्वस्थ और शांत रहने की शिक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ पापा जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना बच्चों, तो दोनों का एक ही उद्देश्य है, हमें संतुलन सिखाना। आइए कुछ रोचक उदाहरणों से इसे समझते हैं। जब हम योग करते हैं तो कई बार एक पैर पर खड़े होने वाले आसन में हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। हम थोड़ा डगमगाते हैं लेकिन फिर खुद को संभाल लेते हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कोई कठिनाई आती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। तब पापा हमें समझाते हैं कि परेशानी से डरना नहीं, उसका सामना करना है।
1: पापा, आप दूसरे पापा जैसे क्यों नहीं हो?
2: मैं दूसरे पापा से अच्छा पापा हूं।

0: बहुत काम करता हूँ। बाकी पापा संडे
1: को आराम। यानी योग शरीर को संभालना सिखाता है और पापा जीवन को। अच्छा, जब हम कोई आसन करते हैं ना, तो उसे पूरी तरह एक बार में नहीं कर पाते, उसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। उसी तरह पापा भी तो हमें यही समझाते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मेहनत और धैर्य से ही मंजिल हासिल होती है। यानी योग और पापा दोनों हमें धैर्य भी सिखाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब आप कोई आसन करने बैठते हो तो आपका मन इधर उधर भटकता है ना, कि कोई क्या कर रहा है, पेड़ में चिड़िया आकर बैठ गई है जैसे कई चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं, तो आप आसन सही से नहीं कर पाते। वैसे ही पापा भी इसी बात पर जोर देते हैं कि काम करो तो पूरे मन से करो, पढ़ाई करो तो मन लगा के करो। यानी कि योग अगर ध्यान सिखाता है तो पापा सही दिशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है बच्चों? यही कि संतुलन का मतलब कभी न गिरना नहीं होता। संतुलन का मतलब है गिरकर फिर से उठना, हार कर फिर से प्रयास करना और मुश्किलों में भी आगे बढ़ते रहना। यही पाठ योग हमें अपने अभ्यास से सिखाता है और यही सीख पापा हमें अपने अनुभवों से सिखाते हैं। इसलिए ही योग और पापा में एक अद्भुत समानता है। अब इस सुंदर संदेश को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब मिलकर सुनते हैं एक प्यारा सा पापा के लिए ये गीत।

तो चलिए बच्चों, आज का आपका छोटा सा होमवर्क यही है कि आपको अपने अपने पापा को ये बताना है कि वे हमारे लिए कितने खास हैं, क्योंकि कभी कभी एक जादू भरी झप्पी और प्यार भरा धन्यवाद भी उनके लिए एक खूबसूरत उपहार बन जाता है। तो पापा के गले लगकर उनको ये कहना मत भूलना कि आप मेरे लिए बहुत खास हैं पापा। और बच्चों, आपके मम्मी पापा के साथ साथ आपकी नेहा दीदी भी रीनीट देने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहती है। फिलहाल अब दीजिए आज्ञा आपकी अपनी नेहा दीदी को। जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मुकुल। कार्यक्रम पेश कर रही थी श्रीमती नेहा गोस्वामी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: से
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और बेबी अंघा को। फिल्म का नाम है स्कूल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: साथ।
1: और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध।

0: अभी आपने सुना रीमा लाहिड़ी का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम था हार जीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए, सोनू निगम और साथियों का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है बॉस।

0: अभी आपने विजय बेनडिक्ट की आवाज़ में मेरी जाने मन फिल्म का एक गीत सुना। लीजिए अब सुनिए सुदेश भोंसले और देवांग पटेल की आवाज़ में चाहत फिल्म का एक गीत।
1: Break it, bang it! Break it, bang it!

चाहत फिल्म में सुदेश भोसले और देवांग पटेल के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है।

दिन के 11 बजने वाले हैं। अब श्रोता सुनेंगे, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के एपिसोड 20 का यह भाग।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल

0: पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी,
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं।
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना है, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं
1: देगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व तो सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो,
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: तो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65,000-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजन,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है।
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
2: उसने जो 10+2+3+2 का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है।

0: ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने एक साल पढ़ा, एक साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कर वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने एक साल पढ़ा हो, दो साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं, उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो। तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, इस और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है, लगभग ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है

0: हजार रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट,
0: तीन इंस्टॉलमेंट में दो दो हजार के, तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं। तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान है 12 करोड़ छोटे किसान है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है, और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही
0: हैं, सर्जना जी बता रही हैं, तो वो भी तो वही बन रही हैं। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं, वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं, उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, रबी वनवाल जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते,

0: पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखें कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ,
0: हाँ,
1: उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
0: श्री अन्न उसको
1: जी
0: नाम दिया, जिसको
1: जी
0: मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए।
1: जी
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है, किसान को जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके
1: बेंचमार्क
0: खरीद
1: सेट
0: ले,
1: हो
0: नहीं
1: जाता है
0: खरीद लीजिए जाके जितना
1: जी।
0: रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता।
1: बिल्कुल
0: सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज में बिल्कुल काम नहीं करवाओगे।
1: जी
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री
1: जी
0: आपकी करेगी, तो
1: जी
0: ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को। तो ये भी
1: बहुत बढ़िया,
0: हम इसको एक अगर देखें, तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की
1: बिल्कुल
0: और एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, तो महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के, समझ के, जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में
1: आत्मनिर्भर
0: जनधन खाते खोले गए,
1: जी
0: डायरेक्ट
1: जहां
0: बेनिफिट
1: जरूरत
0: उनको
1: है।
0: मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और
0: उनका
1: एक तरह से जो
0: मशरूम
1: हमारी
0: पर कर लिया,
1: ट्रेडिशन है हमारे देश
0: जो हम,
1: की, वो भी
0: हाँ,
1: अलाइव
0: मतलब
1: रहती
0: कि
1: है।
0: हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है। तो
1: बिल्कुल
0: ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ
1: और एक्चुअली
0: चलो,
1: वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है। और भी जो
0: और जैसे
1: मोर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं, कि रोटी, कपड़ा और मकान,
1: जी
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है,
1: जी
0: ठीक है।

0: उनको जो राशन दिया जाता है, एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं पिछले
1: 25 करोड़
0: 25
1: लोग जो
0: करोड़
1: हैं,
0: लोग,
1: करोड़
0: हाँ गरीबी
1: करोड़
0: रेखा से ऊपर उठे
1: मतलब
0: हैं।
1: आप
0: और
1: बहुत
0: डिजिटल
1: बड़ी
0: पेमेंट
1: संख्या है।
0: देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही
0: हाँ
2: हैं वो पूरे देश में है आपकी
0: सब्जी
2: पेमेंट
0: वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
2: जी
0: टिक्की वाला।
2: व्यापक सशक्तिकरण है।
0: जी
2: अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। तो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
1: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ। जहां मैं भी गया था, पिछले दिनों जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था। नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है। अब इमली वहां पे जो तोड़ा, अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था। अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं
2: प्रोडक्ट
1: उसके,
2: बने,
1: तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है।
2: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है।
0: बाजरा
1: अवेयरनेस
0: सोचिए
1: नहीं,
0: कोई
1: जो
0: खाना
1: सोच
0: नहीं
1: का अंतर
0: चाहता
1: यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं, और उनकी जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
2: विकास
1: और
2: का
1: एक
2: एक
1: अच्छी
2: भी बढ़े भी
1: पॉइंट।
2: अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंचे।
1: एकलव्य स्कूल का नाम लिया कि आदिवासी
2: अच्छा,
1: बच्चों
2: आप जो
1: के,
2: सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की, और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे
1: वो
2: हैं।
1: यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन
2: जिसको
1: अगर
2: भी
1: आप
2: नाम दो
1: देखोगे
2: उसके।
1: केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जोखोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब वो 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे ना पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही हैं।
2: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास,
2: जी
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चलें। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो

0: विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा, लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ूं, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब
1: जी
0: एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब
1: हाँ
0: वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई,
1: हंड्रेड हो
0: शायद
1: गई,
0: 100 हो गई।
1: हंड्रेड हो
0: और
1: गई।
0: ये सब चीजें युवाओं को भी
1: हाँ,
0: प्रेरित करती है
1: ये
0: कि हमारा
1: प्रेरित
0: कितना है। रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए
0: जी
1: हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में, और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाश
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के 20वें एपिसोड का प्रसारण। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें FM चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। दिन के 11:35 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

अभी आपने लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ में हिना फिल्म का ये गीत सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत को सुनना चाहते थे सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभानी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोली जैन और प्रमोद दमानी।

0: Akashvani at 90.
1: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे महबूब फिल्म का ये गीत। गीत के बोल शकील बदायूनी के हैं, संगीत नौशाद का। इस गीत को सुनना चाहते हैं चुनगुरा का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, मेहनाज नदीम, नदीम सादाब, एस जाकिर हुसैन बाव। इसी गीत को सुनने के लिए बल्लभ गार्डन बीकानेर से पत्र लिखा है एलसी शहजादा, कमला देवी पंवार, लालचंद पंवार और अरुणा रानी पंवार ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मेरे महबूब फिल्म का ये गीत।

फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए मन्नाडे और साथियों की आवाज़ में बावरसी।

फिल्म का गीत, गीत के बोल कैफी आजमी के हैं, संगीत मदन मोहन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, गीता रानी, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंसराज, मनोहर लाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पंवार ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

चनैया डाय उठाय लियो गिर नक पर बंसी बजावत जेन चनैया जगके मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। न्यूज एट 9 में आप समाचार सुनेंगे रात्रि 9 बजे। यह समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। आईसीसी वुमेन्स टीम 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 होने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार साथियों हाजिर आया मां वीना अज जो सिंधी प्रोग्राम खणी सबन बुदननन ए नंडड़े नंडड़े गुलनन के वीना दीदी जो प्यार भरो नमस्कार तमा सबन जो अजो के प्रोग्राम गुलनन जी गुलकारी में स्वागत आहे अज तमा बुदंदा फोन आउट से जरिए बारन सा केल गालियों तेखा पोए चर्चा कंदासी योग दी ते आई मजा मानंदासी गीत संगीत जो तचो गाल बोल शुरू ता कयूं बारन का हेलो केर पियो गाल है
1: मां हितेश पियो गाल
0: है हितेश तमा घणे साले जा आयो बेटा
1: मां यारे साले
0: जा यण केड़ी क्लास में पढ़ना आयो
1: 6 दर्जे में पढ़ना
0: आया अच्छा 6 दर्जे में पढ़ना आयो अरे वाह बेटा अज तमा असा के छा बुधाण ता चायो
1: मां एकड़ी कविता तो बुधाण चाया
0: एक कविता बुधाण ता चायो
1: अच अच अच मिया अच अच अच वस वस वस मिया वस वस वस जोर सा वस मिया वस वस वस तकड़ो तकड़ो वस मिया वस वस वस तर्स थोड़ो तर्स मिया तर्स तर्स तर्स मुंगी डाडी आए बाहर तर्स तर्स तर्स डाडो डाडी घर में अचन पोए बले वस वस वस तकड़ो तकड़ो वस मिया वस वस वस
0: अरे वाह ये तो डाडी सुठी कविता बुधायव आई हूं अभी हिन कविता जी सख्त जरूरत हुई गर्मी जो जिका हाल लगो पियो आहे मी जी तमाम गुर्जा है त हां बेटा बियो छाता बुधान चायो असा के
1: मां एकड़ी बियो कविता तो बुधान चाया
0: केड़ी कविता
1: डॉक्टर थिंदस
0: डॉक्टर थिंदस अरे वाह तो बुधायो जल्दी सा
1: डॉक्टर थिंदस मां वडो थी डॉक्टर थिंदस प्राल वेंदस अस्पताल वेंदस नंडा वडा सब बीमार दिसंदस मां वडो थी डॉक्टर थिंदस पट्टी बदंदस दवा दिंदस डॉक्टर थिंदस डॉक्टर थिंदस मां वडो थी डॉक्टर थिंदस
0: हां बेटा तमा जरूर डॉक्टर ठहिंदा ऐ डॉक्टर ठही करे जरूरतमंद माणुन जी मदद लाभ तैयार रह जई ठीक है ना
1: हां
0: बारो अचो मां तमा के बुधाया ती योगी

साथियों तव्हां असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधण था चाहियो पर कॾहिं तव्हां दुकान ते आयो कॾहिं ऑफिस में कॾहिं मार्केट निकिता आहियो त कॾहिं सफ़र पिया कयो त रेडियो सेट खे मिस कंदा आहियो हन पर हाणे सिंधी प्रोग्राम ॿुधण जी राह में ईंदड़ सभु मुश्किलूं आसान करे रहियो आहे तव्हांजे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हा इहो मोबाइल तव्हांखे असांजा सिंधी प्रोग्राम ॿुधाए सघंदो दुनिया जे कंहिं बि कुंड में दुबईअ में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जॻह ते तव्हां ॿुधी सघंदा पंहिंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तव्हांखे करणो बसि एतिरो ई आहे त जीअं तव्हां ॿिया एप्स डाउनलोड कंदा आहियो बसि ईअं ई प्ले स्टोर ते वञो ऐं सर्च वारी जॻह ते टाइप कयो एन ई डब्ल्यू एस ओ एन ए आई आर यानी न्यूज़ ऑन एयर ऐं उन खे इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तव्हांखे मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ई हेठि प्रसार भारती जो लोगो नज़र ईंदव ऐं तव्हांखे उन खे ओपन करणो आहे ओपन कंदा त साम्हूं पहिरीं खाॿे पासे लाइव रेडियो ऐं साॼे पासे लिसन न्यूज़ लिखियल नज़र ईंदव तव्हां लाइव रेडियो खे क्लिक कंदा त उते हिकु लंबी फ़हिरिस्त नज़र ईंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रनि जी

0: तव्हां खे उते ई सभिनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखियल पढ़ण में ईंदव। सर्च में तव्हां जीअं ई जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ॿ चैनल्स नज़र ईंदव, हिकु विविध भारती जयपुर यानी VBS ऐं ॿियो हवा महल छपियल नज़र ईंदड़ असांजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमेर चैनल। बस अची पहुतासीं सही जॻह ते। हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सभु प्रोग्राम ऐं सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं जो 12:10 ते। त सामिन ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते मंगल, विस्पत ऐं आर्तवार जे ॾींहं में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गॾु।
1: ॿारो अॼु आहे 21 जून। अॼु असां मल्हाए रहिया आहियूं वर्ल्ड योग ॾींहुं। हर साल 21 जून जो ई इहो ॾींहुं सॼी दुनिया मल्हाईंदी आहे। हिन ॾींहं खे मल्हाइण जी पहल भारत जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कई हुई। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग डे जे रूप में मल्हाइण जी घोषणा कई हुई, छो जो 21 जून गर्मियुनि जो सभिनि खां लंबो ॾींहुं थींदो आहे न। ॿारो योग सां हर बीमारी जो इलाज पॉसिबल आहे। योग असांजी टेंशन घटाए असांखे हेल्दी रहण में ॾाढो साथ ॾींदी आहे। असांखे योग खे पंहिंजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में शामिलु करणु ज़रूरी आहे। ऐं तव्हां बि कंदा ई हूंदा न ॿारो। अॼुकल्ह त सभिनि स्कूलनि में बि योग करायो वेंदो आहे। ऐं मूंखे ख़बर आहे हाणे छुटियूं बि हलनि त तव्हां थोरा ढिला थी विया आहियो, त हाणे थोरो कमर कसे वठो, छो त स्कूल बि स्टार्ट थियण वारा आहिनि। त पाण खे थोरो थोरो चाहे 10 मिंट जो ई योग कजे पर ज़रूर करणु घुर्जे। हुन सां पंहिंजे शरीर में स्फूर्ती बणी रहंदी आहे ऐं टाइम ते बुख बि लॻंदी आहे। अचो ॿारो हाणे ॿुधो था योगी।
2: आयो आयो आयो यारो मुल्क सॼे में नाले वारो।

0: बारो हाँ मां तवां के बुधाया थी एक डाढ़ी सुहिणी कहानी तवां ध्यान नहीं बुधंदा ठीक है ना भलाई जो फल एक दफे जी गाल आहे त जंगल में काठियार काठियो करण ला वियो ओचितो सामू एक शीं डिठाई शीं के डिसी डाढ़ो डिजी हो डप सुरा बेहोश थी किरी पियो थोड़ी देर खां पो होश में आयो डिठाई त शीं चुपचाप उते ही बिठो आए यो डिसी काठियार हैरान थी वियो काठियार डिठो त शीं के पेर में एक कंढो चुभल आए शीं पंहिंजो अॻियो चंबो खणी सूर विचां किकराए रहियो काठियार दिल बधी शीं जे भरिसां आयो ॾाढी ख़बरदारीअ सां संदसि पेर मां कंडो कढियई कंडो निकिरण सां ई शीं खे राहत मिली हू माठ मेठ में वणनि जे घाटनि झंगटनि में हली वियो कुझु ॾींहनि खां पोइ शहर जो राजा कंहिं सबबु करे काठियार ते अची डमरियो राजा हुकुम कयो त काठियार खे पिंजरे में वञी विझो खेसि शींहं खां मारायो वञे राजा जा सिपाही हिकु बुखायल शींहं खे पकड़े आया मुक़रर ॾींहं ते हिकु पिंजरे में शींहं ऐं काठियार खे गॾु बंदि कयऊं पिंजरे जे भरिसां तमाशो ॾिसण लाइ केतिरा ई माण्हू अची बीठा हुआ काठियार ॾिठो त ही उहो ई जंगल वारो शींहं आहे ओचितो शींहं गजकार करे काठियार मंझां छलांग ॾिनो ॾिसंदड़ जी दिलि ज़ोर ज़ोर सां धक धक करण लॻी शींहं काठियार जे अॻियां अची बीह रहियो हू काठियार जा पेर चटण लॻो छो त सुञाणंदो हो न हुन काठियार खे को बि नुक़सान न पहुचायो इहो ॾिसी सभु माण्हू हैरान थी विया राजा काठियार खे पिंजरे मां ॿाहिरि कढायो पाण वटि घुराई ऐं काठियार खां पुछियई त शींहं तोखे छो न खाधो काठियार राजा खे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई काठियार जी ॻाल्हि ॿुधी राजा जो गुस्सो काफ़ुर थी वियो राजा काठियार जी सजा माफ़ कई ऐं ॿारो चवंदा आहिनि न त हैवान बि कंहिंजी भलाई नथा भुलाइनि भलाई जो भांगो ज़रूरु मिलंदो आहे ऐं हीअ त कलयुग आहे त सुठा सुठा कर्म करो त कर्मनि जो फल हथो हथो मिले ऐं कंहिंखां बि डिॼिजे न छो त पाण कर्म सुठा था कयूं त पाण खे हाणे छा करणो आहे हाणे पाण खे सुठा कर्म करणा आहिनि सभिनि जी मदद करणी आहे केरु पियो ॻाल्हाए
1: मां लविशा सावलानी पई ॻाल्हायां
0: हा लविशा तव्हां असांखे छा ॿुधाइण था चाहियो
1: हिकु कविता
0: हा बेटा ॿुधायो असांखे कविता
1: कविता जो नालो आहे मेले में हलो त हलूं मेले में घुमण हलूं मेले में हलो त हलूं मेले में घुमण हलूं मेले में मेले में चौडल हलनि फिरनियूं बि थियूं उते फिरनि मेले में चौडल हलनि फिरनियूं बि थियूं उते फिरनि खेल तमाशा ख़ूब थियनि रांदीका बि जाम मिलनि खेल तमाशा ख़ूब थियनि रांदीका बि जाम मिलनि मेले में रस ॾाढी आहे मूंखे कोई परवाह न आहे मेले में रस ॾाढी आहे मूंखे कोई परवाह न आहे पापा जो हथु पकड़ी हलंदसि पोइ मां घुम थी न मूर वेंदसि पापा जो हथु पकड़ी हलंदसि पोइ मां घुम थी मूर न वेंदसि हलो त हलूं मेले में
0: अरे वाह ही त ॾाढी सुठी कविता हुई मेले में घुमण जी हाणे त भई मूंखे बि ॾाढी इच्छा बि थिए त मां बि मेले में घुमी अचां तव्हां बि मेले वेले में घुमण वेंदा आहियो छा
1: हा मां वेंदी आहियां मज़ो ईंदो आहे
0: अरे वाह लविशा तव्हां ॾाढी सुठी कविता ॿुधाई तव्हां असांजे ॿुधणनि खे हेॾी सुठी कविता ॿुधाई त तव्हांजो तमामु घणो घणो शुक्राना अचो ॿारो हिकिड़ी ॿी आखाणी तव्हां ॿुधो
2: स्कूल में अॼु ख़ासि घोषणा थियणी हुई सभिनी ॿारनि खे हिन घोषणा जो इंतज़ारु हो प्रिया जॾहिं इहा ॻाल्हि पंहिंजी माउ खे ॿुधाए रही हुई

त हुन जी आवाज़ में शामिल जोश हुन जी माउ के महसूस थी रहे हो। प्रिया माउ के चयो, मम्मी पतो अथव कल सुबह जो प्रार्थना जे वक्त असाजी हेडमास्टरानी चयो हो त हुआ अड़ी घोषणा करण वाली आए जहें में हर कोई बार शामिल थी सकंदो, मां भी शामिल थी सकंदस। हाँ हाँ पुट जरूर, यह तो तमाम सुठी गाल आए, प्रिया के चुमी डींदे माओ चयो। माओ के खबर हुई त प्रिया समझवारी पढ़ाई में अव्वल रहण वारी आहे, कदई भी उदास कोन थींदी आहे। जन्म खां एक टंग में पोलियो हुजण करे हुआ पेंजी साहेड़ियुनि वांगुर कहें रांद में, डांस में ऐं ॿियनि कार्यक्रमन में भाग वठी कोन सघंदी हुई। प्रिया जी माउ पंहिंजे मन में प्रार्थना कई, साईं झूलेलाल हिन दफ़े चेटीचंड ते मां तव्हांजे भंडारे में वञी सेवा कंदसि, जेको पुॼंदो सो दान बि कंदसि, पर कुझु अहिड़ो कयो जो तव्हांजी हीअ बचड़ी जीअं पढ़ाई में अव्वल रहंदी आहे तीअं ॿियनि कार्यक्रमनि में हिसो वठी सघे ऐं शाबासी हासिल करे सघे। प्रिया जी माउ अखियूं मूटे इहा प्रार्थना करे रही हुई। जॾहिं हुन अखियूं खोलियूं त प्रिया साम्हूं बीठी हुई ऐं हुन खे ॾिसी रही हुई। हुन माउ खां पुछो, मम्मी तूं मुंहिंजे लाइ लाल साईंअ खां कुझु घुरियो हो न? हा पुट, लाल साईंअ सभिनि जी आस पुॼाईंदो आहे, तुंहिंजी आस बि पूरी कंदो। मां हिन दफ़े चेटीचंड ते भंडारे में वञी सेवा कंदसि, प्रिया चयो। मां बि, मां सभिनि खे पाणी पीआरींदसि माउ। जंहिं उत्साह सां प्रिया हिन ॻाल्हि खे चयो हो हुन खे बीणो कंदे प्रिया जे सुर में सुर मिलाईंदे हुन जी माउ चयो, अरे वाह, असां ॿई माउ धीउ साईंअ जे दरबार में हली करे सेवा कंदासीं, कहिड़ो न मज़ो ईंदो, सभिनि सां गॾु मिली जयकारो लॻाईंदासीं, आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। माउ खां पहिरीं प्रिया जयकारो लॻाए चयो, हुन जी माउ बि हिन जयकारे में प्रिया जो साथ ॾिनो। प्रिया तयार थी करे स्कूल पहुती, प्रार्थना में हुन जे पासे में रवीना बीठी हुई। रवीना अक्सर हुन खे चिड़ाईंदी हुई, हुन जो मज़ाक उॾाईंदी हुई, पर प्रिया सदाई हुन जी ॻाल्हि खे खिली टारे छॾींदी हुई। रवीना प्रिया खे चयो, प्रिया तूं अखियूं मूटे सुपिनो न ॾिसजांइ, हेड मास्तराणीअ कुझु बि घोषणा करे तुंहिंजे लाइ त सभु बेकार। एतिरे में प्रार्थना शुरू थी वई। प्रार्थना खां पोइ हेड मास्तराणीअ चयो, प्यारा ॿारो तव्हां सभिनि खे इंतज़ारु हूंदो त अॼु कहिड़ी घोषणा थींदी जंहिंमें सभु ॿार हिसो वठी सघंदा। हुन अॻियां चयो, तव्हांखे पतो आहे त इम्तिहाननि खां पोइ ॾेढ महीनो मोकल थींदी आहे, हिन ॾेढ महीने में तव्हां कोई अहिड़ो कमु करे ॾेखारिजो जेको सभिनी खां जुदा हुजे ऐं तव्हांजे स्कूल सां गॾु गॾु तव्हांजे परिवार जो नालो बि रोशन करे सघे। जेको ॿार अहिड़ो कुझु कंदो हुनखे स्कूल जो प्रधानमंत्री बणायो वेंदो। जेको ॿार प्रधानमंत्री ठहंदो उहो ईंदड़ सॼे साल स्कूल में थियण वारनि सभिनी जलसनि में मंच ते ख़ासि महिमाननि सां गॾु वेहंदो। ॿारनि ताड़ियूं वॼाइणु शुरू करे छॾियूं। हेड मास्तराणीअ चयो, अञा ॻाल्हि रहियल आहे, पूरी ॻाल्हि ॿुधी पोइ ताड़ियूं वॼाइजो। हुननि जी ॻाल्हि ॿुधी करे सभिनि ताड़ियूं वॼाइणु बंदि कयूं। वरी हेड मास्तराणीअ चयो, जेको बि ॿारु प्रधानमंत्री ठहंदो हुन जे स्कूल अचण वञण जी व्यवस्था स्कूल पारां कार मोकिले कई वेंदी ऐं हू ॿारु प्रार्थना में रोज़ मूं सां गॾु बीहंदो या बीहंदी। अहिड़ी घोषणा न कॾहिं ॿुधी हुई कंहिं ऐं न कॾहिं सोची हुई। सभिनि वरी ताड़ियूं वॼाए हिन घोषणा जो स्वागत कयो। रवीना जी नज़र प्रिया ते पई त प्रिया मुस्कुराए ॾिनो। रवीना वटि प्रिया जी हिन मुस्कुराहट जो कोई जवाबु कोन हो। रवीना प्रिया जी टंग जी तरफ़ ॾिसी हूं करे हली वई। सभिनी ॿारनि वांगुरु प्रिया जे मन में सुपना तरण लॻा, जीअं नीरे आकाश में अछा पखी उॾामंदा साफ़ नज़र ईंदा आहिनि। प्रिया जो मन बि थी रहियो हो त हुन खे पर लॻी वञनि, जीअं त हूअ उॾामी झटि वञी घर पहुचे, माउ खे वञी ॿुधाए स्कूल जी घोषणा ऐं पंहिंजे सुपने जे बाबति। ॿारनि जे मन में सुपना जॻाइणु असांजे वस में थींदो आहे। ॿारनि जे मन रूपी धरतीअ ते बस ॿिज रखण जी देरि थींदी आहे। प्रिया जी ॻाल्हि ॿुधी, प्रिया जी ख़ुशी ॾिसी प्रिया जी माउ इहा ॻाल्हि सोचे रही हुई। हुन प्रिया खे चयो, प्रिया वक़्तु पंहिंजी रफ़्तार सां हलंदो आहे, जेको माण्हू हिन रफ़्तार खे सुञाणे पंहिंजा पेर वधाईंदो आहे

0: कोई हासिल कंदो आए मंजिल ए जेको सुस्ती कंदो आए वो सुमंदो रहंदो आए। ऊंघ आरसू उबासी तीने रोगरी मासी। प्रिया इन पहाके जो मतलब खबर अथई ना? माओ प्रिया का पुछो। जवाब दींदे प्रिया चयो, हाँ इन जो मतलब आए त निंड सुस्ती ए उबासी असा के मरीज बणाए छडींदा आहिनि। प्रिया जी पिट थपथपाईंदे उन जी माओ चयो, पुट चवंदा आहिनि त उदम के पर आहिनि, कोशिश परन वांगुर थींदी आहे, कोशिश करण वारो कामयाब थींदो आहे। प्रिया ए हुन जी माओ मिली करे चयो ए बिनिन वडो टहक दिनो। इम्तिहान थी विया ए मोकलूं भी पूरी थी वयूं। स्कूल खुलिया, सभिनी बारन पंहिंजे पंहिंजे आजमूदे जे बाबत ब कागर लिखी करे हेडमास्टराणी खे ॾिना। सभिनि कागरनि ते ॿारनि जे माउ या पीउ जा दस्तख़त बि कयल हुआ। मास्तराणी सभिनि ॿारनि खे ॿुधायो त 7 ॾींहनि खां पोइ प्रधानमंत्री जे नाले जी घोषणा थींदी। इहो हफ़्तो गुज़ारण मुश्किल थी वियो। रवीना, मानसी, चांदनी सभई प्रिया खे छेॾण लॻा। प्रिया जी ॻाल्हि कंहिं कोन ॿुधी, हू पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाइण लॻा। प्रिया निराश कोन थी। हुन खे पंहिंजी ॾाॾीअ जे मुख खां ॿुधल हूअ कविता यादि अची रही हुई, खड़ी रांदि कंहिं में जे हारायो अमीं, ख़बरदार हरगिज न घबरायो अमीं, न कुरको न कंजो न पछतायो अमीं, सदा यारो कोशिश कंदा ईअं रहो। हफ़्तो निकिरी वियो। सभिनी ॿारनि खे इंतज़ारु हो प्रधानमंत्री जे नाले जी घोषणा जो। जेको बि ॿार प्रधानमंत्री ठहंदो हुनखे रोज स्कूल वठण ऐं छॾण वास्ते स्कूल जी कार वेंदी। हू ॿार रोज प्रार्थना में हेडमास्टराणी सां गॾु मंच ते बीहंदो, सभिनि जलसनि में ख़ासि महिमान सां गॾु मंच ते बीहंदो, इनाम विराईंदो, जीअं त कोई स्कूल जो न देश जो प्रधानमंत्री ठही वियो हुजे। ॿार पाण में इहे ॻाल्हियूं करण लॻा हुआ। हफ़्तो गुज़रियो, जुमे जो ॾींहुं आयो। प्रधानमंत्री जे नाले जी घोषणा करण वास्ते हेडमास्टराणीअ ॻाल्हाइणु शुरू कयो। हुननि चयो, असां सभिनी ॿारनि जा लिखियलु आज़मूदा पढ़िया। तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त 300 खां वधीक ॿारनि गर्मियुनि जी मोकलुनि में कुझु न कुझु नओं कयो। ॿारनि जी हौसला अफ़ज़ाई लाइ असां 5 ॿारनि खे चूंडियो आहे। सभिनि ज़ोर सां तारियूं वॼायूं। हेज़मास्टराणी अॻियां चयो, हिननि 5 ॿारनि तमामु सुठा कम कया। हिननि 5 ॿारनि मां 1 ॿार खे प्रधानमंत्री ठाहियो वेंदो, बाक़ी ॿारनि खे मिलंदो सम्मान पत्र। हेडमास्टराणीअ 5 ॿारनि जे बाबति ॿुधाईंदे चयो त इहे 5 कम हुआ। पहिरियों, मोहन पंहिंजे दोस्तनि सां मिली करे पंहिंजे घर जे पासे वारे बाग़ जी सफ़ाई कई ऐं हुन बाग़ में 5 वण पोखियईं। ॿियो, रोशनीअ 100 माण्हुनि खां नेत्रदान जा फार्म भराया। टियों, भारतीय पंहिंजे सभिनि रिश्तेदारनि सां संकल्प पत्र भराया त हू बीड़ी, सिगरेट ऐं गुटका खाइण छॾे ॾींदा। चौथों, राम जेको स्टेशन जे पासे में रहंदो आहे हुन स्टेशन ते रोज 2 कलाक माण्हुनि खे पाणी पीआरियो। 5, प्रिया जंहिं गुडी ऐं रांदीका ठाहिण जी पंहिंजी कला हिकु अहिड़ी भेण खे सेखारी जंहिंजो भाव देश जी रक्षा कंदे पंहिंजी जान देश ते क़ुर्बान कई। हिन भेण सां मिली करे प्रिया सॼे महीने में 500 खां वधीक रांदीका अहिड़ी शयुनि मां ठाहिया जेके असांजे घर ऐं घिटीअ में बेकार पयूं हूंदियूं आहिनि। पोइ 15 ॾींहं हिननि सभिनि रांदीकनि जी दुकान लॻाए हिन जो विक्रो कयो। उहे सभु पैसा हुन भेण खे ॾिना जेका शहीद जी भेण आहे। 5 ॿारनि जा कम ॿुधी सभिनि ताड़ियूं वॼायूं। हेडमास्टराणी अॻियां चयो, ॿारनि जे कम खे ॾिसी करे असां सभिनि खे फ़ख्रु करणु घुरिजे। सभिनि जा कम तारीफ़ जे क़ाबिल आहिनि। सभिनि खां वधीक सुठो कमु कयो आहे प्रिया। असां हिन करे प्रिया खे प्रधानमंत्री घोषित था कयूं। शाबाश प्रिया। सभिनी पारां तारियूं वॼण लॻियूं। हेडमास्टराणीअ मंच तां लही करे हेठि आई ऐं प्रिया खे वठी मंच ते पहुती। प्रिया जो सुपिनो सस थी वियो हो। हुन मन ई मन में जयकारो लॻायो, आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। प्रिया खे लॻो त हुन जी माउ ऐं ॾाॾी हुन जे पासे में बीठियूं आहिनि ऐं उहे बि लाल साईं जो जयकारो लॻाए रही हुई।
1: हिन आखाणी सां गॾु ई घड़ी जी सुई इशारो बि करे ही प्रोग्राम असांखे हिते ही ख़तमु करणो पवंदो। वरी गॾजंदासीं ईंदड़ सिंधी प्रोग्राम में। तेसीं ताईं वीना दीदी खे इजाज़त ॾींदा। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12:40 हो गए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए यशोदास की आवाज़ में टूटे खिलौने फिल्म का गीत। गीत के बोल कैफी आज़मी के हैं, संगीत बप्पी लहरी का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की

0: बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आपने एक दूजे के लिए फिल्म का ये गीत सुना। स्वर था अनूप जलोटा और लता मंगेशकर का। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रेम पुजारी फिल्म का गीत। स्वर किशोर कुमार का है, गीत के बोल नीरज ने लिखे हैं, संगीत SD बर्मन का।

0: प्रेम पुजारी फिल्म में किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीएसएफ के साथ मिलकर डीपीआर बनाई जाएगी। श्री वैष्णव आज बीकानेर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। रेल मंत्री ने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क पहुंचने से न केवल क्षेत्र के लोगों को रेल सेवाएं मिलेंगी, बल्कि ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें सरूपसर से, जैतसर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला, खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।
1: इस अवसर पर श्री वैष्णव ने लालगढ़ साबरमती ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। श्री वैष्णव आज ही जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग किया। मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का

0: संचार करता है। इधर प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग के कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सिरोही के आबूराज में आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। नीट यूजी 2026 परीक्षा आज दोबारा हो रही है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है, जो अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे बंद हो जाएगा। विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र से ही प्रवेश दिया जा रहा है। एनटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जा रही है। इधर प्रदेश में री नीट परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। आज विश्व ऊंट दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत करता है वीणा ओझा और ज्योति वर्मा।

0: महिला जगत की दिव्य किरण संग भर ले जीवन में नए रंग, अपनाएं स्वस्थ जीवन शैली के ढंग, योग से संपन्न करें सभी जीवन में उमंग। और इसी उमंग उत्साह के साथ आज के कार्यक्रम में मैं ज्योति वर्मा
1: और मैं वीणा ओझा करते हैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को देते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई, क्योंकि ये करता है हम सब की भलाई। बहनों, 21 जून यानी कि आज का दिन है और जून का महीना आते ही इस खास दिन की याद हमें आ जाती है और ये है 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसी पर करते हैं हम आज की चर्चा को शुरू।
0: इसीलिए हम सभी आपसे आज योग की चर्चा शुरू कर रहे हैं, साथ में करेंगे आपके परिवार की, बच्चों की बातें, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं की, खान पान की, रूप रंग की, और साथ में होगा आपको और आपके काम के साथ मन को सुकून और लय देने वाला मधुर संगीत।
1: बिल्कुल ज्योति, लेकिन सबसे पहले हम योग की बात करते हैं क्योंकि ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ और संतुलित बनाता है, इसीलिए इसे सर्वांगीण विकास का आधार भी माना जाता है।
0: हाँ वीणा, सर्वांगीण विकास का मतलब है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास। योग इन सभी पहलुओं पर एक साथ काम करता है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है।
1: और सही कहा तुमने, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय कम और तनाव ज्यादा है। ऐसे में योग तनाव को दूर करने का एक सरल और प्रभावी माध्यम बन गया है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है
0: क्या?
1: कि योग के लिए कोई भी महंगे संसाधनों की या फिर साधनों की या बहुत खर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जरूरत होती है एक अच्छे मन की और एक थोड़ी सी जगह की।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही है तुमने कि इसमें कुछ

0: अच्छा नहीं लगता। और ये तो हुआ वैसा ही ना कि जैसे हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो आए। मुझे याद है कुछ साल पहले तक लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझते थे, लेकिन अब इसकी अहमियत को बेहतर समझने लगे हैं, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है।
1: सच में ये सब चीज़ें हम महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि घर, परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं, जबकि योग से महिलाओं की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, शरीर में संतुलन बना रहता है, मानसिक तनाव भी कम होता है, और यही नहीं, योग हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता
0: बढ़ाता
1: है।
0: है। एक बात और वीणा मेरे को ध्यान में आ रही है कि आजकल एक समस्या

0: और सकारात्मक सोच विकसित होती है।
1: सच में ये सब चीजें हम महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि घर परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि योग से महिलाओं की शारीरिक क्षमता बढ़ती है, शरीर में संतुलन बना रहता है, मानसिक तनाव भी कम होता है, और यही नहीं योग हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है।
0: एक बात और वीणा मेरे को ध्यान में आ रही है कि आजकल एक समस्या परिवार की और भी है कि बच्चों का ज़्यादा समय मोबाइल और ऐसे ही उपकरणों के साथ बीतता है, जो कि उनके हर तरह के विकास में बाधक बनता जा रहा है। ऐसे में अगर बचपन से ही बच्चों को योग के लिए प्रेरित किया जाए ना, तो आजकल स्कूलों में वैसे किया भी जा रहा है, इससे क्या होगा, उनमें अनुशासन, धैर्य और एकाग्रता विकसित होती है, और पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
1: ज्योति, बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी योग इस किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के योगासन और प्राणायाम उन्हें सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर उम्र के लिए योग उपयोगी है।
0: वीणा, इतना उपयोगी है तभी तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था, और फिर 2015 से तो पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके महत्व को सभी समझ रहे हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह हमारे देश की एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।
1: बिल्कुल ज्योति, योग हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली और संतुलित दिनचर्या से ही संभव है।
0: तो आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ समय हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए और योग के लिए अवश्य देंगे।
1: लेकिन बहनों, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि
0: बात?
1: एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें। शुरुआत 10 मिनट से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे समय और क्रियाएं बढ़ाते जाएं। अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।

0: स्टेशन। जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: वीणा, अभी हम बात कर रहे थे ना कि बच्चे योग करने के लिए प्रेरित होते हैं तो उनमें संस्कृति को समझने और अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे वो संस्कार होंगे। क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, जीवन में आगे बढ़ सकें, एक अच्छे इंसान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।
6: बिल्कुल ज्योति, लेकिन एक अच्छे इंसान के लिए केवल शिक्षा नहीं ज़रूरी होती, ज़रूरी होते हैं अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और जीवन में मूल्यों की आवश्यकता। और ज्योति, पता है ये बच्चों को कहाँ से मिलती है? ये उनको मिलती है उनके पिता से। क्योंकि बच्चों की जो माता होती है, कहते हैं कि उनकी पहला विद्यालय होती है, पहला स्कूल होती है, उन्हें सब कुछ सिखाती है। लेकिन माता को तो प्रयास करने पड़ते हैं सिखाने के लिए, लेकिन बच्चे अपने पिता को देखकर कुछ चीजें अपने आप ही कहते हैं ना,
5: सीख लेते हैं,
6: सीखते जाते हैं। दरअसल बच्चे का व्यक्तित्व

0: जिस नींव पर खड़ा होता है उसमें परिवार की भूमिका और उसके पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, और घर में मिलने वाली सीख और वातावरण ही उसके जीवन की दिशा को तय करते हैं।
1: सही कह रही हो वीना, संस्कार केवल किताबों को पढ़ने से थोड़ी आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे अपने घर के वातावरण और बड़ों के व्यवहार से सबसे अधिक सीखते हैं, क्योंकि वो वही तो करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। अगर माता पिता परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं, समय का महत्व समझते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो बच्चे ये सब कुछ अपने आप ही सीख लेते हैं।
0: बिल्कुल ज्योति, और आजकल तो जैसे कह रहे हैं ना कि वो ट्रेन में भी चल रहा है,
1: हाँ,
0: कि कहते हैं कि लड़कों को भी हमें वो सारी शिक्षा देनी चाहिए
1: जो लड़कियों को देते हैं,
0: ताकि वो अपनी आने वाली जीवन संगिनी के साथ उसी तरह का व्यवहार कर सके,
1: है ना,
0: और वो उसको और वो सारी चीजें, वो गुण वो कहाँ से सीखेगा? वो सीखेगा अपने पिता से। अगर एक पिता को वो अपने घर में देखता है कि वो माता की किस तरह से केयर कर रहे हैं, कैसे सम्मान कर रहे हैं, तो वो गुण उन्हें सिखाने नहीं पड़ेंगे, वो बच्चों में अपने आप से ही आ जाएंगे। और बहनों, बच्चों का संस्कारवान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ समझाना। केवल उन्हें डांटने या आदेश देने से बात नहीं बनती है, बात बनती है आपके व्यवहार से। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार घर में कर रहे हो, तो बच्चों में वो संस्कार अपने आप
1: सीख लेंगे।
0: बिल्कुल। और जब हम किसी बात का कारण उन्हें समझाने लगते हैं या उन्हें डांटने लगते हैं, तो वो चीजें उन्हें ऐसा लगता है कि हमें माता पिता हम पर वो चीजें थोप रहे हैं, लेकिन देख कर वो चीजें अपने आप ही सीख जाते हैं। क्यों ज्योति?
1: बिल्कुल, और ऐसी बातें जो है ना, छोटी छोटी बातों से वो इतना सीख जाते हैं कि आगे चलकर वो उनके व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है। एक बात मेरे को और बताना चाहूंगी बहनों को, कि बच्चे जब इन बातों को अपना लेना, तो इनकी छोटी छोटी आदतों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। हम शाबाशी देते हैं ना बच्चों को, तो उससे क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छा करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। क्योंकि अच्छे संस्कार कोई एक दिन में तो बनते नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अच्छे संस्कार बनाने के लिए सभी का सहयोग, जैसे विद्यालय का, परिवार का, समाज का, सबकी भूमिका होती है, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना?
0: ज्योति, एक बात और मेरे मन में आ रही है कि
1: क्या?
0: जो एक खिलौना बच्चों को आजकल बहुत प्रिय है,
1: वो तो मोबाइल
0: मोबाइल, इससे बच्चों को हमें दूर रखने की कोशिश करनी है। और अगर बच्चे देख भी रहे हैं, तो उस पर नजर रखें कि वो देख क्या रहे हैं,
1: क्योंकि हमें उनका व्यक्तित्व का निर्माण करना है ना। तो मोबाइल देखने की बात तो मेरे जहन में इसके साथ साथ एक और बात आ रही है, कि बच्चों की संगत पर भी ध्यान देना चाहिए, और उनके माता पिता उनके साथ अगर कुछ समय बिताएंगे रोज, तो बच्चे अपनी बातें शेयर करेंगे और किसी गलत राह पे जाने से रुकेंगे। उनको कोई मार्गदर्शन ऐसा मिलता रहेगा ना, अपने माता पिता का साथ मिलता रहेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके।
0: बिल्कुल ज्योति, इसमें हम कह सकते हैं कि माता पिता की दोनों की भूमिका होती है, लेकिन खास भूमिका होती है इसमें पिता की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ तो 24 घंटे जैसे बच्चों पर नजर रखती है और उनकी हर छोटी छोटी गलती पर उन्हें डांटती है, फटकारती है। लेकिन ऐसे में अगर पिता उनके दोस्त बनकर रह जाए, उनकी, जैसे वो कहते हैं ना कि उनके मन की हर चीजों को समझे, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, एक दोस्त बनकर उनकी फीलिंग को शेयर करे और समझे, तो वो बच्चा है वो कभी गलत राह पर जाएगा ही नहीं। वो अपनी हर चीज अपने किसी दोस्त के पास, या वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी दूसरे के पास जाते हैं तो शायद ही वो सही सलाह देगा हमें, लेकिन एक पिता है वो दोस्त के रूप में और पिता के रूप में हमें एक अच्छा डिसीजन लाइफ में देता है। तो बहनों, अगर हम बच्चों से प्रेम, सम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमें बच्चों का दोस्त बनकर रहना है और उनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करनी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि यही तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, माता पिता की, क्योंकि घरों का वातावरण हमको ऐसा बनाना चाहिए कि वो जीवन मूल्यों के आगे बढ़ सकें। अब ये बच्चे तो क्या होते हैं, एक गीली मिट्टी की तरह, उनको जैसा चाहें हम उसमें मोड़ सकते हैं, और हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े, हमारा नाम करे। माता पिता का नाम करने पर बहुत प्रसन्न होते हैं बच्चे जब नाम करते हैं।
0: बिल्कुल ज्योति, तो हम बच्चों की और अपने घर परिवार की और ढेर सारी बातें ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन हम कार्यक्रम को भी एक मोड़ देते हैं और ले जाते
1: हैं
0: गीत संगीत की तरह।

0: लेते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: बहनों, सफलता तीन चीजों से मापी जाती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल योग से मिलती है। और बात जब महिलाओं की हो तो उनकी शक्ति के साथ मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में योग कितना और कैसे सहयोग करेगा, ये सुनते हैं आज की वार्ता में, जिसका विषय है नारी शक्ति और योग। और वार्ताकार हैं श्रीमती सविता अग्रवाल।
5: नारी केवल एक शब्द नहीं है, ये सृजन,
6: संवेदनशीलता,
5: शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। एक नारी ही परिवार की धुरी होती है, वो माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है और साथ ही समाज की निर्मात्री भी है। लेकिन इस पूरी यात्रा में अक्सर वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य को सबसे पीछे रख देती है। यही वो बिंदु है जहाँ योग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों, आज का जीवन तेज भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है। विशेषकर महिलाओं के जीवन में जिम्मेदारियां कई गुना अधिक होती हैं। घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, नौकरी, सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्व, इन सब के बीच स्वयं के लिए समय निकालना एक चुनौती बन जाता है। परिणाम स्वरूप थकान, अनिद्रा, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, नींद की समस्या और अनेकानेक शारीरिक रोग शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला बन जाता है। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करना। जब एक नारी योग को अपनाती है तो वो केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को सशक्त बनाती है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। साथ ही ये मानसिक तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है और सकारात्मक सोच को विकसित करता है। महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण आता है, मेनोपॉज। इस समय हार्मोनल बदलाव के कारण कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। योग इस अवस्था को सहज और संतुलित बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, साथ ही शरीर को नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। योग केवल रोगों से बचाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब एक महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती है तो वो हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकती है। एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव रखती है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, क्या योग कठिन है? क्या इसके लिए विशेष समय या साधन की आवश्यकता है? तो उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट है। दिन में केवल आधा से एक घंटा नियमित समय निकालकर भी हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ सरल योगासन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, धनुरासन, मंडूकासन, नौकासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, पवन मुक्तासन, मर्कटासन, ये सभी शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखने में सहायक हैं। साथ ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम

विलोम, भ्रामरी जैसे प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल बदलाव मेनोपॉज। हार्मोनल असंतुलन और विशेष रूप से मेनोपॉज, जिसे रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है, के समय महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बदलावों का सामना करना पड़ता है, जैसे हॉट फ्लैशेस, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी या नींद की समस्या, वजन बढ़ना, थकान। इस स्थिति में योग और प्राणायाम बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित उपाय हैं। मेनोपॉज के लिए कुछ उपयोगी आसन है ताड़ासन। ताड़ासन शरीर का संतुलन सुधारता है, हार्मोनल सिस्टम को स्थिर करता है, साथ ही मानसिक स्थिरता बढ़ाता है। वैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए साथ ही वृक्षासन एकाग्रता और संतुलन बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। कई बार आपने सुना होगा, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि क्या करें, याद नहीं रहता या कुछ भूलने जैसी आदत होती जा रही है। तो इस प्रकार के आसन हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हुए हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं अन्य आसन है भुजंगासन, हमारी रीढ़ को मजबूत करता है, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों को सक्रिय करता है, थकान और डिप्रेशन कम करता है। सेतुबंध आसन हार्मोनल संतुलन में सहायक है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तनाव और चिंता को कम करता है। वहीं बद्ध कोण आसन महिलाओं के लिए पेल्विक क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है, हार्मोनल संतुलन सुधारता है और मासिक समस्याओं में लाभकारी है। वहीं योग के साथ अगर हम प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम हार्मोनल संतुलन में सहायक है और मानसिक शांति को प्रदान करते हुए तनाव में कमी लाता है। भ्रामरी प्राणायाम चिड़चिड़ापन और चिंता कम करता है, नींद अच्छी आती है। कपालभाति हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वहीं वजन नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण है। उज्जयी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को शांत कर हार्मोनल संतुलन में सहायक है। बहनों, बढ़ती उम्र में वजन बढ़ना और साथ ही तनाव और अनिद्रा की समस्या आम है। आमतौर पर ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, हार्मोनल बदलाव, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ता मानसिक दबाव इसके मुख्य कारण हैं। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि योग और प्राणायाम इन तीनों पर एक साथ काम करते हैं, शरीर, मन और हार्मोन्स को संतुलित करके। महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, या यूं कहें कि ये हमारे शरीर के लिए कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है, जो हार्मोनल बैलेंस को भी मदद करता है और वहीं बढ़ते हुए बॉडी वेट को भी संतुलित करता है। त्रिकोणासन कमर और पेट की चर्बी कम करने में सहायक है, हमारे पाचन को सुधारता है। भुजंगासन पेट की चर्बी को कम करके रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। वहीं अगर हम दूसरे रूप में कहें तो एंटी एजिंग आसन भी हम कह सकते हैं। पवन मुक्तासन वायु दोष को दूर कर पाचन क्रिया को सुधारता है, पेट हल्का रहता है। तनाव और अनिद्रा को कम करने के लिए बालासन, शशांकासन, विपरीत करणी, शवासन महत्वपूर्ण है। साथ ही प्राणायाम को भी अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से स्थान देना चाहिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ओम की चैंटिंग बेहद कारगर हैं। जब बढ़ती उम्र में या मेनोपॉज के संदर्भ में योग अपनाने की बात आती है तो कुछ तैयारी और सावधानियां बेहद जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि योग कोई व्यायाम नहीं अपितु एक जीवन शैली है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन, नींद इन सब की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक हमारी दिनचर्या पूर्ण रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की यौगिक क्रिया अथवा योगासन करने से पहले अपना रूटीन निर्धारित करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दिन भर हल्का सुपाच्य शाकाहारी भोजन करना, अधिक तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचाव कर रखना, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच को विकसित करना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता से दूरी, कल को छोड़कर वर्तमान

0: यानी आज मैं जीने की आदत, जिसे कहें कि आज की बहुत बड़ी ये आवश्यकता है कि या तो हम बीते कल में जीते हैं या फिर आने वाले कल में की कल्पनाओं में हम जीते रहते हैं, और इन दोनों ही कल में हम आज को छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तनाव को जन्म देता है। योग और प्राणायाम को अपने आचरण में धारण करके हम आज में लौट सकते हैं। सही मायने में योग कुछ समय योगा मैट पर व्यतीत करने की क्रिया नहीं, अपितु 24 घंटे की जीवन शैली है। योग में जीवन शैली को दिनचर्या में नियमित स्थान देने के बाद बात आती है तैयारी और सावधानियों की। सबसे पहले किसी अनुभवी योग प्रशिक्षक से मार्गदर्शन लें, ताकि आसन आपकी शारीरिक स्थिति के अनुकूल हों। हल्के स्ट्रेच से शुरू करें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। शरीर की सीमाओं का सम्मान करें। कोई भी आसन दर्द दे तो उसे तुरंत रोक दें। हाइड्रेशन और संतुलित आहार का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी पुरानी बीमारी जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, थायराइड, PCOD या जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, तो योग आरंभ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। शुरुआती दौर में हल्के और सरल आसनों से शुरुआत करें, ताकि शरीर को धीरे धीरे आदत हो। अपने शरीर को टॉर्चर ना करें। मेनोपॉज के दौरान शरीर अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए अपने आहार और पोषण का पूरा ध्यान रखें और अभ्यास के बाद शरीर को पर्याप्त आराम दें। योग के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम को भी अपनाएं, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। अक्सर देखा जाता है कि जब योग या प्राणायाम करना आरंभ करते हैं, तो हम देखा देखी में कभी कभी कुछ ऐसे आसन भी करने लगते हैं जिन्हें हमारा शरीर साथ नहीं देता। तो इस प्रकार की स्थितियों से बचें, क्योंकि योग किसी चुनौती को धारण करने का काम नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का प्रमुख आधार है। नारी शक्ति, नारी आधार, उससे ही चलता जीवन संसार। स्वस्थ रहे जब तन और मन, योग बने उसका सच्चा धन। प्राणायाम से शांति अपार, आसन से शरीर सुदृढ़ साकार। योग से खिलती हर मुस्कान, नारी बने शक्ति की पहचान। मेनोपॉज की कठिन डगर में योग बने साथी हर सफर में। संतुलन, शांति, नई ऊर्जा भर दे जीवन में मधुर ताजगी सा। स्वस्थ नारी, सशक्त समाज, योग ही इसका सच्चा राज। नारी है सृजन की पहली पुकार, नारी से हो जग का विस्तार। ममता, शक्ति, त्याग की धारा, उससे ही जग सारा न्यारा। पर अक्सर खुद को भूल जाती, सबके लिए जीवन बिताती। तन थक जाता, मन भी हारे, फिर भी नारी चुप ही सहारे। ऐसे में योग बना है सहारा, जीवन में लाए उजियारा। तन को दे शक्ति, मन को विश्राम, योग से मिटे हर एक अवसाद। जब नारी स्वस्थ, प्रसन्न, मजबूत, तभी बने परिवार का स्वरूप। उसकी मुस्कान ही घर का श्रृंगार, उससे ही जग में खुशियां अपार।
1: तो बहनों, आपने सुना, योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। ऐसे ही विचारों से आप लाभान्वित हुए इस वार्ता में, और अब हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बहनों, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब यह परिवर्तन ब्रह्मांडीय स्तर पर घटित होता है ना, तो उसका प्रभाव मानव जीवन, संस्कृति और लोक परंपराओं पर भी दिखाई देता है ना।
5: बिल्कुल बहनों, क्योंकि सूरज की गति में छिपा है ऋतुओं का संदेश। सूरज की गति में छिपा है ऋतुओं का संदेश। प्रकृति के परिवर्तन में जीवन का विशेष परिवेश। बहनों, 21 जून का ये दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और हमारी लोक परंपराओं के अद्भुत समन्वय का भी एक प्रतीक है।
4: जी हाँ बहनों, 21 जून को जब संपूर्ण विश्व योग दिवस के रूप में स्वास्थ्य और संतुलन का उत्सव मनाता है, तब यह दिन हमें उन खगोलीय परिवर्तनों की भी याद दिलाता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बड़े ही सूक्ष्म अवलोकन से समझा और लोक जीवन में उत्सवों के रूप में इसे आत्मसात भी किया।
5: बहनों, भारतीय संस्कृति में संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। लेकिन इसके पीछे केवल ज्योतिषीय गणना ही नहीं, बल्कि ऋतु परिवर्तन, कृषि चक्र, खान पान और जीवन शैली से जुड़ी वैज्ञानिक सोच भी निहित है।
4: और विना, यही कारण तो है कि हमारी लोक परंपराएं प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देती हैं। बदलती ऋतुओं के अनुरूप भोजन होता है, वेशभूषा, दिनचर्या में परिवर्तन, सब कुछ। और हमारे लोक जीवन की दूरदर्शिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भी तो ये परिचायक होता है।
5: और शायद ही यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ खगोल विज्ञान केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेत खलियानों से लेकर हमारी रसोई और त्योहारों तक जीवन के प्रत्येक पक्ष में ये हमसे जुड़ गया है। तो आइए 21 जून के इस विशेष अवसर पर प्रकृति, परंपरा और विज्ञान के इस सुंदर सेतु को समझें और जानें कि किस प्रकार खगोलीय परिवर्तन हमारी लोक परंपराओं को दिशा देते रहे हैं।
4: ऋतुओं का क्रम, सूरज की चाल, इन्हीं में छिपा प्रकृति का कमाल। लोक परंपराएं कहती हैं बार बार, प्रकृति से जुड़ाव है जीवन का आधार।
5: और हमारे कार्यक्रम का आधार है गीत और संगीत।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: माटी री खुशबू खेतों रो मान मोटा अनाज है स्वास्थ्य की पहचान। बहनों आज हम बात करेंगे उन स्थानीय मोटे अनाजों की जो कभी हमारी रसोई का अभिन्न अंग हुआ करते थे और आज ये पूरी दुनिया इन्हें श्री अन्न या सुपर फूड के रूप में अपना रही है।
1: बिल्कुल ज्योति। बहनों हम तो जो बात कर रहे हैं कि बाजरा, ज्वार, रागी, कांगड़ी, सावा और कुटकी जैसे मोटे अनाज जिन्हें कहते हैं श्री अन्न, लेकिन ये अन्न फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन से तो भरपूर होते हैं, लेकिन ये गायब हो चुके हैं हमारी रसोई से। अब जरूरत है इन मोटे अनाजों को दादी नानी की रसोई से हमारे किचन तक लाने की, क्योंकि एक समय था जब बाजरे की रोटी, राबड़ी, खिचड़ी और ज्वार का दलिया हर घर में बनता था, लेकिन धीरे धीरे हम इनसे दूर होते चले गए हैं।
0: हाँ सही कह रही हूँ, लेकिन अब समय है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से अपनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व बताएं।
1: क्योंकि बाजरे री रोटी और छाछ रो संग रोग भागे दूर निरोग रहे अंग।
0: तो बहनों आओ अपने खेतों की खुशबू और परंपराओं से जुड़े इन अनमोल मोटे अनाजों को अपनी थाली में स्थान दें,
1: क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था ताकि दुनिया को इनके पोषण और पर्यावरण महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। और बहनों सो स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और समृद्ध किसान का रास्ता हमारी अपनी रसोई से होकर गुजरता है और हम गुजरते हैं आपके दिलों से और आपके प्यार को पाते हैं। तो बहनों इसी के साथ स्वीकार करें आपकी प्यारी सखी वीणा ओझा
0: और ज्योति वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार।

0: The tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers. But today, India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace. He says special steps are being taken to enhance domestic defense production capacity.
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपये के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग

0: brought amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया।

0: महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि

0: बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
2: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई की 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज डलडमरो मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश

0: के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एम बी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 2:30 हुए, श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए मुकेश की आवाज में पत्थर के सनम

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आपने कुमार शानू की आवाज़ में नाराज़ फिल्म का गीत सुना। कातिल शफई की लिखी इस गीत को संगीत दिया था अनु मल्लिक ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए घरौंदा फिल्म का गीत। गीत के बोल गुलजार ने लिखे हैं, संगीत जयदेव का है और स्वर है रूना लैला और भूपेंद्र का।

अभी आपने कालीचरण फिल्म का गीत सुना, स्वर था लता मंगेशकर का। लीजिए सुनिए ताजमहल फिल्म का गीत। गीत के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, संगीत रोशन का है, युगल स्वर है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के।

ताजमहल फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: मेरी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 MHz पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को हैं, हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए

0: विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: जब थमी सांसों की तेज रफ्तार, मन ने छोड़ा चिंता का भार,
1: तन मन का जब हो जाए योग,
2: हल्का लगे जीवन का हर रोग।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूँ आपके साथी प्रियंका सोनी।
2: और मैं हूँ आपके साथी कुमकुम स्वामी।
1: कुमकुम, आज का दिन कुछ अलग नहीं लगा तुम्हें?
2: बिल्कुल लगा प्रियंका, सुबह से ही शहर का मिजाज बदला बदला सा था। आज सुबह निकलते ही हर तरफ योग दिख रहा था, पार्कों में, खुले मैदानों में, कहीं स्कूल के ग्राउंड में, तो कहीं कॉलोनी के छोटे से गार्डन में।
1: हाँ, डेडिकेशन तो देखो, लोग सुबह सुबह चटाइयाँ बिछाए बैठे थे।
2: आज तो आलस ने भी हार मान ली थी।
1: हाँ, 21 जून, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का असर साफ दिख रहा था, जैसे पूरा शहर आज थोड़ा पहले जाग गया हो
2: और थोड़ा शांत भी। वरना आम दिनों में तो सुबह का मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना, आज लोगों ने अपनी सांसों को वक्त दिया।
1: और योग आज सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं था, कहीं बुजुर्ग पार्क में प्राणायाम कर रहे थे, तो कहीं युवा और बच्चे भी फोन साइड में रखकर शांत होकर योग कर रहे थे।
2: यही तो खूबसूरती है योग की, ये उम्र या अनुभव नहीं देखता प्रियंका, बस चाहता है कि आप थोड़ी देर खुद के लिए ईमानदार हो जाएं।
1: लेकिन सच ये भी है कि योग दिवस मनाना आसान है, योग को रोजमर्रा में उतारना थोड़ा सा मुश्किल,
2: क्योंकि हम इसे एक खास दिन समझ लेते हैं, आदत नहीं बनाते।
1: जबकि योग आम दिन के लिए है, डेली करने के लिए है, जब मन बेवजह भारी लगे।
2: और बीकानेर जैसे शहर में जहाँ गर्मी जल्दी थका देती है और दिमाग तो उससे भी पहले हार मान लेता है, और तब हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा आराम चाहिए।
1: लेकिन कुमकुम, आराम भी आजकल बड़ा अजीब सा हो गया है। सोफे पर बैठे हैं लेकिन हाथ में फोन है, दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा है।
2: मतलब शरीर तो एक जगह पर रुका है लेकिन मन नहीं।
1: और योग यही काम आता है, मन को भी वहीं रोकने में जहाँ शरीर है,
2: और यही शायद सबसे मुश्किल काम भी है।
1: हाँ, मुश्किल तो है ही, हम हर समय या तो कल की चिंता में रहते हैं या उसकी प्लानिंग करते रहते हैं।
2: आज कहीं बीच में खो गया है और योग उसी आज में वापस लाने की एक कोशिश है। लेकिन प्रियंका, एक बात साफ कहनी पड़ेगी।
1: क्या बात, बोलो।
2: योग कोई जादू नहीं है, एक दिन किया और जिंदगी बदल गई, ऐसा तो नहीं होता।
1: बिल्कुल, और यही गलतफहमी लोगों को दूर भी करनी है।
2: योग असर दिखाता है लेकिन धीरे, और अगर रोज थोड़ा थोड़ा किया जाए तो फर्क खुद महसूस होगा।
1: इससे आप देखेंगे कि आपकी नींद बेहतर हुई, मन थोड़ा हल्का हो गया और आपका चिड़चिड़ापन भी थोड़ा कम हो जाता है।
2: और इसके लिए दोस्तों, ना तो आपको कोई महंगे मेट की जरूरत है, ना ही किसी बड़े सेटअप की।
1: हाँ, आप कहीं भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर की छत पर या कॉलोनी का पार्क या बस कोई एक शांत सा कोना।
2: आप इसे वहीं कर सकते हैं जहाँ आप खुद को थोड़ा सुन सकें।
1: तो जरा खुद की भी आवाज पहचानिए, अपने आप से पूछें कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ।
2: और ये भी जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा टारगेट रखें, दिन में 10 मिनट बहुत है।
1: अगर रोज के हों तो धीरे धीरे दोस्तों, इससे आपको नींद भी बेहतर आने लगती है और मन भी आपका थोड़ा शांत स्थिर होने लगता है।
2: तो बस बोझ नहीं, अपनी जिंदगी में एक हल्की सी आदत की तरह लाइए योग को,
1: जो आपको बदलने का दबाव नहीं डाले, संभाले।
2: और इसी के साथ चलते हैं थोड़ी मस्ती की ओर, तो आराम से बैठिए और इंजॉय कीजिए आज का हमारा पहला गाना।

0: अब वक्त है दोस्तों आपके फेवरेट सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज आपका पहला प्रश्न है,
1: एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
0: आपने सवाल ठीक से सुन लिया होगा। और आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही डांसिंग गर्ल प्रतिमा किस सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरावस्तुओं में से एक मानी जाती है? तो ये थे दोस्तों आपके दोनों सवाल। अब कार्यक्रम के अंत में आप इनके जवाब हमारे जवाबों से मिलाइएगा। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन

0: प्रियंका, तुम बता रही थी कि तुम्हारे भाई को वीडियो एडिटिंग आती है।
1: हाँ, उसने स्टार्टिंग में मोबाइल पर छोटे छोटे वीडियोस एडिट करने का शौक था और अब कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता है।
0: बस यही तो बात है, मुझे भी ये पसंद है और मेरे मन में भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल आते हैं।
1: ऐसे ख्याल कैसे?
0: कि आजकल बहुत से युवा हैं जिनके पास हुनर है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वही हुनर रोजगार बन सकता है।
1: बिल्कुल, मेरे भाई ने भी कभी नहीं सोचा था कि इससे काम भी मिलेगा, लेकिन आज वही एडिटिंग, वही स्किल उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिला रही है।
0: और यही बात आज के युवाओं को समझनी है। ये वही ऊर्जा है जिसे हम अक्सर युवा शक्ति कहते हैं।
1: लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस शक्ति को सही जगह इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर इसे बस थकान, कन्फ्यूजन और कुछ समझ नहीं आ रहा, इन सब चीजों में गंवा रहे हैं?
0: देखो प्रियंका, आज का युवा पहले जैसा तो है नहीं। वो सिर्फ सरकारी नौकरी की लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता।
1: हाँ।
0: वो सीखना चाहता है, कुछ अपना करना चाहता है। बीकानेर में ही देख लो, कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है तो कोई घर से ही ऑनलाइन बुटीक चला रहा है, कोई फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग सीखकर फ्रीलांसिंग कर रहा है।
1: हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, और सबसे अच्छी बात ये सब बड़े शहरों में जाए बिना हो रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि सभी युवाओं की सोच इतनी क्लियर अब तक नहीं हुई है। बहुत से लोग आज भी यही सोचते हैं कि आखिर हमें आगे करना क्या है।
0: और यहीं पर स्किल की बात आती है। आज रोजगार डिग्री से नहीं, स्किल से तय हो रहा है दोस्तों।
1: हाँ दोस्तों, चाहे वो डिजिटल स्किल हो, टेक्निकल हो या फिर क्रिएटिव स्किल।
0: दोस्तों आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब का काफी चलन है।
1: हाँ, इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स ITI, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखे जाते हैं।
0: लेकिन एक चीज सब में कॉमन है,
1: और वो है दोस्तों शुरुआत में डर कि पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा,
0: लोग क्या कहेंगे, और यहीं पर मन सबसे पहले हार मान लेता है।
1: इसीलिए मन का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना स्किल का।
0: योग, मेडिटेशन या कुछ समय खुद के साथ बिताना, अपने आप को समझना, ये सब उसी मानसिक ताकत को बनाते हैं जो आपको टिके रहना सिखाती है।
1: क्योंकि आज मौके भी हैं और रास्ते भी,
0: बस जरूरत है खुद पर भरोसे की। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं
1: तो घबराइए नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है।
0: बस रुकिए मत, एक स्किल चुनिए
1: और खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए।
0: क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा शहर, पूरा समाज आगे बढ़ता है।
1: अब बात दोस्तों जब युवा की हो और सेना का जिक्र ना आए, ऐसा कभी हो सकता है, तो चलिए कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं सेना को डेडिकेटेड ये गीत।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि आज का युवा फॉर्म भी ऑनलाइन भरता है, पढ़ाई भी ऑनलाइन करता है, बैंकिंग भी ऑनलाइन करता है और दोस्तों से बातचीत भी ऑनलाइन ही करता है। यानी कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा अब स्क्रीन के अंदर बस गया है।
4: हाँ प्रियंका, लेकिन इसी दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना आसान लगता है, वहीं कुछ ऐसे खतरे भी छुपे हैं जो दिखते नहीं, बस अचानक सामने आ जाते हैं। कभी एक अनजान लिंक, कभी एक फर्जी कॉल, तो कभी एक ऐसा मैसेज तो देखने में बिल्कुल सच्चा लगे और हम सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे।
3: बस यही छोटा सा कैसे हमें ले आता है आज के हमारे विषय की ओर, क्योंकि दोस्तों जब दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है तो सुरक्षा भी अब सिर्फ ताले और चाबियों तक सीमित नहीं रह गई। अब जरूरत है डिजिटल सतर्कता की, अब जरूरत है समझदारी की और अब जरूरत है एक ऐसी सोच की जो हमें हर क्लिक से पहले रुककर सोचने की आदत सिखाए, क्योंकि साइबर सुरक्षा आज एक आवश्यकता बन चुकी है।
4: साइबर सुरक्षा का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखना ताकि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी तक पहुंच ना सके। ये एक तरह की डिजिटल ढाल है जो हमें साइबर हमलों से बचाती है। और दोस्तों, साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ पासवर्ड लगाना या फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है।

0: जिसमें तकनीक, जागरूकता, व्यवहार और जिम्मेदारी सब शामिल है।
1: और आजकल तो कुमकुम इंटरनेट पर ही देखने को मिल जाता है कि लोग किस तरह साइबर हमलों का शिकार होते हैं, न जाने कितने तरीके हैं। दोस्तों, ये खतरे ऐसे हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हम उनके शिकार बन जाते हैं।
0: बिल्कुल प्रियंका, जैसे हाल ही में साइबर अपराध का एक नया रूप सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट। शायद दोस्तों आपने खबरों में भी सुनी या फिर कहीं पढ़ी होगी कि अब अपराधी वीडियो कॉल के जरिए आपको अपने ही घर में, आपके अपने कमरे में आपको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर पैसों की मांग करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज साइबर अपराधी तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत चालाक हो चुके हैं। वो आपके डर, आपके लालच और आपकी जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं।
1: और हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ओटीपी किसी को भी बता देते हैं और कुछ लोग तो एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम खुद ही अपने लिए दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के समय में डेटा सबसे कीमती संसाधन बन चुका है। जिसके पास डेटा है उसके पास शक्ति है। कंपनियां इसका उपयोग व्यापार के लिए करती हैं और अपराधी इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए।
0: तो हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज ही आप अपने साथ साथ अपने माता पिता और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी साइबर अपराध के बारे में बताइए और जागरूक कीजिए। इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा सतर्क होकर चलिए, अलग अलग पासवर्ड रखिए और 2-स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करिए।
1: अनजान लिंक से दूर रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करें और हाँ, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें या सीमित जानकारी ही साझा करें। साथ ही अपने मोबाइल फोन में ऐसे अनावश्यक ऐप्स को परमिशन न दें।
0: दोस्तों, असली बदलाव तब आएगा जब हर नागरिक जागरूक होगा, जब हर व्यक्ति अपनी ओर से सावधानी बरतेगा। अगर देश डिजिटल बन रहा है तो हर नागरिक को साइबर स्मार्ट भी बनना होगा। इसलिए अगली बार जब स्क्रीन चमके, कोई लिंक बुलाए या फिर कोई मैसेज लुभाए तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में सुरक्षित है?
1: क्योंकि जिंदगी में सिर्फ क्लिक ही नहीं, कई फैसले भी ऐसे होते हैं जिनमें एक पल ठहर कर सोचना जरूरी होता है। आखिर हर बड़ी मंजिल की शुरुआत किसी छोटे से ख्याल और किसी बावले से सपने से ही तो होती है।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों अब वक्त है प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे उन दोनों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था
1: कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है।
0: इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था
1: कि हाल ही में चर्चा में रही डांसिंग गर्ल प्रतिमा किस सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध
0: पुरावस्तुओं में से
1: एक मानी जाती है।
0: जिसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता।
1: और अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
0: इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, TGT टीचर, स्पेशल एजुकेटर, IT असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती की जाएगी।
1: दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन 16 जून से शुरू हो चुके हैं और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन शुल्क प्रक्रिया, इन सब के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है, तो जल्द ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें।
1: प्रियंका, अभी हम बात कर रहे हैं रोजगार के नए अवसरों की, लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात ये भी है कि हर नया अवसर नया हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो वर्षों पुराने होते हैं और हर नई पीढ़ी के सपनों में अपनी जगह बनाए रखते हैं।
0: और दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी राजस्थान में सरकारी सेवाओं, प्रशासनिक पदों और प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा होती है तो RPSC का नाम अपने आप में सामने आ जाता है।
1: हाँ दोस्तों, RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये राजस्थान सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है।
0: इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई है और इसका मुख्यालय अजमेर में है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC काम करता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर RPSC काम करता है।
1: और इन परीक्षाओं के माध्यम से जो RPSC करवाता है, हर वर्ष हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में कार्य करने का अवसर मिलता है।
0: हाँ कुमकुम, वैसे भी आज के समय में राजस्थान के छोटे छोटे गांव से लेकर शहरों तक लाखों युवा RPSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
1: दोस्तों आज के समय में हम युवाओं के सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई स्टार्टअप की शुरुआत कर रहा है, कोई निजी क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरकारी नौकरी का आकर्षण आज भी बना हुआ है।
0: और इसकी वजह सिर्फ नौकरी की सुरक्षा नहीं बल्कि समाज और राज्य के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर भी है।
1: यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा RPSC की परीक्षाओं में भाग लेते हैं और लोक सेवा के माध्यम से समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं।
0: और इतनी मेहनत, इतने सपने और सिलेबस, इन सब के जाल में कभी कभार बच्चे इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनका दिल, दिमाग और नींद तीनों से एक ही आवाज आती है कि मैं तो लुटपुट गया।

0: दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून के अवसर पर हमने आपसे काफ़ी विषयों पर बातचीत की, जैसे कि युवा शक्ति और रोज़गार के नए अवसर, आरपीएससी के बारे में हमने जाना, हमने बात की साइबर सुरक्षा के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सभी बातचीत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब इसी के साथ दोस्तों, वक्त है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर। तब तक के लिए मैं प्रियंका सोनी
1: और मैं कुमकुम स्वामी,
0: हम दोनों आप सभी को करते हैं
1: नमस्कार।

0: युवा साथियों ने अपना कार्यक्रम सुना युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर नई रेल बीकानेर साबरमती को माननीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की ये रेडियो रिपोर्ट है। संयोजन है श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति है श्री रेवतराम लेघा की और वाचक स्वर है श्री महेश उपाध्याय का। तो आइए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
1: बीकानेर रेलवे स्टेशन से बीकानेर लालगढ़ अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ आज सुबह 10 बजे किया गया। इस नई रेल को माननीय रेल सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के रेलवे स्टेशन को 100 वर्ष पूर्ण होने की चर्चा करते हुए कहा,
2: ये सर बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, इसके जब 100 साल पूरे हुए तो एक 100 साल का फंक्शन यहाँ किया गया, तो उस समय के जो GM साहब थे वो आए थे और एक रेलवे ने 100 साल में बीकानेर में क्या क्या इनोवेशन किए, क्या क्या तरक्की की, उस सारा विवरण एक एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया था। वो एक बहुत शानदार अवसर था और इसी रेलवे स्टेशन पे हुआ था।

0: आज का भी अवसर शानदार है, हमें रेल मंत्री जी को सुनना है। रेल मंत्री जी के श्रीमुख से ही घोषणा होने वाली है, आपको सबको जानकारी है। बीकानेर अहमदाबाद से साबरमती एक्सप्रेस के माध्यम से सीधा जुड़ रहा है, लेकिन बीकानेरवासी सर आपको सबसे बड़ा धन्यवाद वंदे भारत ट्रेन का दे रहे हैं साहब। जो भी ट्रेन में जाता है आपको याद करता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को याद करता है। और यहाँ जिस तरह से डबलीकरण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ सांखला फाटा और कोटगेट फांटा, इनकी जो समस्या थी उनका समाधान की ओर ये शहर बढ़ रहा है, इसमें रेल मंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जब पूरा प्रोजेक्ट देखा एक बार रेल भवन में, तब उन्होंने कहा कि ये समस्या कब से है, कोटगेट फाटक और सांखला फाटक की। जब उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा, एक बहुत जो हमारे मेंबर ट्रैफिक थे उनकी अध्यक्षता में 3-4 आदमियों की कमेटी बनाई, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जब ये बने सतीश जी, तब मेरे घर पे एक स्वागत समारोह था, उसका अभिनंदन समारोह था हमारे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन बने सतीश जी उनका, उसमें रेल मंत्री जी खुद आए थे। उस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बीकानेर में रेलवे विकास क्या हो सकता है, अनूपगढ़ से लेकर के खाजूवाला तक लेकर के ये कैसे बॉर्डर का विकास हो सकता है, रेलवे इसमें है नहीं, बॉर्डर है रेलवे नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस काम में बहुत तेजी आई है, ये भी हम हमारे रेल मंत्री जी के श्रीमुख से ही सुनेंगे, पर बहुत तेजी आई है। वहाँ पे जब इन्होंने पूछा कि अर्जुन जी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने कहा साहब कोटगेट फाटक वाली और हमारे तो सांखला फाटक वाली आई सबसे बड़ी समस्या है, इन्हें थे मेड़ दो तो बड़ो मोटो काम हो जैसे। तो राजस्थान सरकार से बात की, डिजाइन उपलब्ध कराया, बजट में सहयोग किया, राजस्थान सरकार को भी कहा कि हम इतना आपको टारगेट आरयूबी के दे रहे हैं, उसमें आप इसको प्रायोरिटी से लीजिए, और वो प्रायोरिटी से लिया गया। और अब इस समस्या का समाधान नजदीक है, 2014 आया, इसी रेलवे स्टेशन पे हमने सफाई की, यहाँ DRM थी एक मंजू गुप्ता, वो और हम दोनों नीचे उतरे ट्रैक पे, पहली बार बीकानेर से लालगढ़ तक हम ट्रैक में गए, और जब आस पड़ोस की बस्तियों को देखा, DRM साहब ने कहा इस तरह का वातावरण है, और आज आप देखते हो लोग रेलवे स्टेशन पर घूमने आते हैं, यही बदलता हुआ भारत है और बढ़ता हुआ भारत है।
1: माननीय रेल सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अपने उद्बोधन में राजस्थान में होने वाले रेल विकास की बात रखते हुए अपना उद्बोधन दिया।
2: बीकानेर आना हुआ और बीकानेर की शौर्य भूमि में माननीय श्री मेघवाल जी ने निमंत्रण दिया था कि इस बार आप योग, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पालना है, वो बीकानेर में करें। मैं साथियों सबसे पहले आपके सामने जो विषय रखूंगा वो विषय है हमारे पूरे बॉर्डर एरिया का, ये हमारे पूरे बॉर्डर एरिया का प्रोजेक्ट। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें स्वरूप सर से, जैत सर से अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर, एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला से जैसलमेर, और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलके काम करना, फौज के भी यहाँ पे हमारे कोई अधिकारी होंगे, BSF के अधिकारी भी होंगे, तो आप सबके साथ मिलकर सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।

0: ये आप देखो, देश के विकास के लिए संकल्प शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र से चलने वाले लोग हैं। हमने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत से देश को ही और एकमात्र देश को ही अपने सर पर रखा है। उनको देश का सम्मान, देश के लिए काम करना, वही और वही एक अकेला संकल्प है हमारे लिए। जो देश के लिए सोचते हैं साथियों, वही जनता के लिए, वही पब्लिक के लिए, वही विकास के लिए काम कर सकते हैं। आज देश में 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। कितना साथियों? 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। ये हमारा बीकानेर। साथियों, राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम आज चल रहे हैं। पूरे राजस्थान का रेलवे का नक्शा बदल जाएगा आने वाले वर्षों में, 76,000 करोड़ रुपए के। मोदी जी ने रेलवे का बजट पहले तो डबल किया। मोदी जी ने आके रेलवे के बजट को डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 10 गुना किया और अब 15 गुना किया, 10,228 करोड़ रुपए में।
1: बीकानेर पश्चिम विधानसभा के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने बीकानेर को भाग्यशाली कहा।
2: हमारा बीकानेर बहुत भाग्यशाली है कि मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात लगातार बीकानेर कोई न कोई ट्रेन मिलती जा रही है। वंदे भारत मिली, आज ये मिली और आगामी जैसे हमारे रेल मंत्री जी ने अभी घोषणाएं की है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीकानेर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती में भी अभी रेल चलनी शुरू होगी, इस प्रकार रेलवे लाइन भी उधर बिछ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का तो इसलिए है कि बीकानेर वर्षों से एक मांग चली आ रही थी कि बीकानेर को अहमदाबाद सीधा जोड़ा जाए, तो इस साबरमती एक्सप्रेस के माध्यम से बीकानेर को अहमदाबाद से जोड़ा गया है। इसलिए हम सब हमारे बीकानेर के सांसद अर्जुन राम जी, जिन्होंने भी प्रयास किया है, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, उनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ आके और योग में योग करके और योग करने के बाद रेल प्रारंभ कर दी। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं।
1: इस अवसर पर आम लोगों ने इस नई रेल सेवा के आरंभ होने पर खुशी जाहिर की।
3: मेरा नाम अतीक है और आज हम बीकानेर जंक्शन में बैठे हैं और आज राजस्थान को एक नई सौगात के रूप में ट्रेन मिली है, जिसे राजस्थान वासी और गुजरात वासियों को सुविधा प्रदान होगी। और इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए आज माननीय मंत्री अश्विनी जी वैष्णव यहाँ आए हुए हैं।
4: मेरा नाम सुरेंद्र पाल।
5: आज यहाँ बीकानेर साबरमती ट्रेन रवाना हो रही है, आप आए प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है?
4: अच्छा लगा, पहली बार चल रही है बीकानेर से साबरमती के लिए, तो अच्छी बात है।
6: हाँ, ये बीकानेर से अहमदाबाद के लिए एक्सप्रेस चलाई गई है, अच्छी, इससे रोजगार वगैरह भी बढ़ेगा, लोगों के लिए सुविधाएँ बढ़ेंगी, अच्छा साधन है। बाकी और चीज़ों से जैसे पब्लिक सर्विस होगी ना, बस होगी, रेल होगा, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर आएंगे अश्विनी वैष्णव, वो इसका पदार्पण करेंगे, जिससे कि लोगों के लिए अच्छे सुख सुविधा का साधन है ये।
7: यह निश्चित रूप से बीकानेर और जो राजस्थान के इस बीकानेर, शेखावटी, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र की जनता के लिए सीधा जुड़ाव अहमदाबाद से हो रहा है और हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोगों को एक सीधी दैनिक रेल सेवा मिली है और इसके लिए हम लोग माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
1: इस प्रकार आज बीकानेर रेलवे स्टेशन से बीकानेर लालगढ़ अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस रेल का शुभारंभ हुआ। रेडियो रिपोर्ट के संयोजक थे अमित सिंह, प्रस्तुति थी रेमतराम लेगा की, तकनीकी सहयोग था सुरेश गहलोत और सुभाष कुमार का, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का।
8: अभी आप सुन रहे थे ये रेडियो रिपोर्ट। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर नई रेल बीकानेर साबरमती को माननीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के अवसर की थी ये रेडियो रिपोर्ट। मीडियम वेव 215.05

मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आज संध्या 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में जिला स्तरीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। सुनिएगा ये रेडियो रिपोर्ट संध्या 6:05 पर। आज का हमारा मुख्य आकर्षण है संध्या 7 बजे से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

0: एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप प्रस्तुत है डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में जिला स्तरीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर है श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन है श्री अमित सिंह का।
4: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में सुबह 6 बजे आरंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सामूहिक योगाभ्यास कर आम जन को यह संदेश दिया कि योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आयोजन का आरंभ शंख ध्वनि और वंदे मातरम से

0: केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बीकानेर के लिए विशेष इसलिए है कि आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्री हमारे मध्य हैं और आपका नाता राजस्थान से है, इस नाते भी राजस्थान में विशेषकर बीकानेर में आज आपका आगमन हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है, महत्वपूर्ण पल है। योग के माध्यम से हम निरोग कैसे रह सकते हैं, इस दिशा में जो एक मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया, आज पूरा संसार उसका अनुसरण कर रहा है। अभी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत योग भी करना है, योग की क्रियाएं भी करनी है। हमारे शरीर में चार पार्ट है ऐसा माना गया है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि शारीरिक क्रियाएं ही मात्र योग नहीं है, योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग हम प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर को भी ठीक रख सकते हैं, मन को भी संतुलित रख सकते हैं, बुद्धि निर्णय सही करे इस दिशा में बढ़ सकते हैं और आत्मा को भी संतुष्टि दे सकते हैं, यही आज का कार्यक्रम है।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने योग के साथ बीकानेर में आरंभ हो रही नई रेल का भी जिक्र किया।
2: राम राम सा, बीकानेर की शौर्य भूमि पे आज आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ साथी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग को संभालने वाले श्री अर्जुन जी मेघवाल जी का। आपने मुझे बीकानेर आने का न्योता दिया कि इस बार आप योग बीकानेर में करें। जब रेल मंत्री आए तो रेल भी साथ आनी ही पड़ती है, तो आज बीकानेर से अहमदाबाद की नई रेलवे सर्विस भी चालू होगी। यहाँ से योग के बाद में हम सभी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बीकानेर से अहमदाबाद की इस रेल के लिए माननीय मेघवाल जी ने बहुत प्रयास किया था और अपने करीब करीब पूरे इस क्षेत्र में बीकानेर से, जोधपुर से, लूणी से, आगे जालौर से जो अहमदाबाद की कनेक्टिविटी की लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड भी आज पूरी होगी। साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पवित्र पर्व में शामिल हैं।
0: श्रोताओं, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। आइए सुनते हैं संपादित अंश।
3: यहाँ कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर

साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक

0: पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है।
1: योग का संदेश दिया राजस्थान सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री सुमित।

0: को उदाहरण है।
1: योग संदेश। योग प्राचीन भारत के मानव कल्याण के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है, अर्थात मन को शरीर से जोड़ना एवं मानव को प्रगति से जोड़ना। योगाभ्यास की प्रणाली को, तकनीकों को समूह मात्र नहीं होकर जीवन जीने का तरीका है। योग व्यक्तिगत देखभाल का सार्वभौमिक देखभाल में बदलने की कला एवं विज्ञान है। आधुनिक शोध में बहुत सारे मनोदिक विकारों में योग की प्रभावकारिता सिद्ध है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है तथा व्यक्ति के समग्र विकास में योग की भूमिका को देखते हुए ही वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी है। भारत आदिकाल से विश्व कल्याण के विचारों का समर्थक रहा है और दिशा में योग एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। आज 190 से अधिक देश योग दिवस मना रहे हैं और योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकारों को दूर करने में मदद मिल रही है। वर्तमान जीवन शैली में बढ़ते मानसिक तनाव और कम होती सहनशीलता की स्थिति से बचने में केवल योग ही कारगर स्थित है। केवल योगाभ्यास के द्वारा मानसिक शांति स्थापित होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, समभावी योग है, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भावनात्मक स्थिरता ही योग है। किसी भी विकसित राष्ट्र का प्रथम सोपन मजबूत स्वास्थ्य होता है, अतः हम सब योग को अपनाकर स्वयं स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें तथा विश्व भर में सकारात्मकता का संचार करें।
0: योग अभ्यास के क्रम में श्री प्रशांत कुमार ने ओंकार का उच्चारण करवाया और फिर योग प्रार्थना का दोहरान भी करवाया।
2: ओंकार का उच्चारण करेंगे तो सभी कमर सीधी करके और हाथ घुटनों पर रखें ध्यान योग की स्थिति में, अंक के साथ और ओंकार का ऐसा गहरी लंबी सांस लेकर के उच्चारण करेंगे। योग प्रार्थना का दोहरान करेंगे। ओम संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे।

0: मिलते हैं।
1: कार्यक्रम में विभिन्न आसनों और प्राणायामों का अभ्यास योग प्रशिक्षकों आयुर्वेद विभाग की डॉक्टर संतोष शेषमा, योग गुरु दीपक शर्मा, वहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बीके कमल बहन ने ध्यान करवाया। आइए सुनते हैं एक झलक।
2: श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, ये एक चक्कर हुआ, एक बार और दोहराएं। एक, दो, तीन, चार। ग्रीवाचालन की तीसरी क्रिया, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें ठुड़ी और कंधा एक सीध में हो। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे को, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, ये एक चक्कर हुआ, एक बार और दोहराएं। एक

0: चालन की चौथी क्रिया श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को वक्षस्थल से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में ग्रीवा को चक्राकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये एक चक्कर हुआ।
1: सभी दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों पैरों को परस्पर सीधा रखें, दोनों हाथों की हथेलियों को नितंब के पार्श्व भागों पर रखें, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन सामने, दृष्टि सामने की ओर रखें। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्र शब्द का अर्थ होता है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। अपने पैरों के तलवों को परस्पर मिलाएं और उन्हें अपनी ओर खींचें। हाथों की अंगुलियों से पैरों के पंजों को कस के पकड़ें। अब श्वास को लीजिए और अपनी कमर को सीधा करें। शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। इस आसन का अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता व दृढ़ता की भावना स्थापित होती है।
2: इस आध्यात्मिक स्वरूप में परम

0: धन्य परमात्मा की ऊर्जा मैं स्वयं अनुभव कर रही हूँ। परम चैतन्य परमात्मा का प्रकाश, उनकी धवल किरणें हम सब की ओर प्रवाहित हो रही है।
1: योगाभ्यास आरंभ होने से पहले हमने बात की जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन से।
2: आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज बीकानेर में इस स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर के ऐतिहासिक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हैं। यहाँ पर पूरा राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से, केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से आयोजन किया जा रहा है, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि योग दिवस में बढ़ चढ़ के भाग लें।
1: आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राधेश्याम ने इस अवसर पर बताया।
3: योग के बारे में तो सबको पता है कि ये 12वां योग दिवस है, सब जानते हैं। ये धीरे धीरे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये जो ध्येय है कि योग जन जन तक पहुंचे, उसकी कड़ी में ये योग दिवस सार्वजनिक रूप से मनाया जाना ये सुनिश्चित हुआ है 21 जून को। और ये लगभग मेरा मानना है कि भारत की अधिकतर जनता के पास और विश्व की भी अधिकतर जनता के पास योग के महत्व के बारे में जानकारी हो गई है। और वैसे आज देखा जाए तो भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में जो पहली प्राथमिकता है मनुष्य की, वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा की है। आज जैसा वातावरण चल रहा है उसमें स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और योग अपनी भारत की एक ऐसी विधा है जो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। स्वास्थ्य के बारे में हम जानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दो तरह का होता है। मन को, मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखती है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सही रखती है। और जब ये दोनों सही रहेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ व्यक्ति अपने परिवार का, अपने समाज का निर्माण कर सकता है, अपना राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, अपने राष्ट्र को अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है।
1: प्रजापति ईश्वर विश्वविद्यालय के बीके गणेश ने अपनी बात रखते हुए कहा।
4: ओम शांति, मैं ब्रह्मा कुमार दिनेश, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम पर पहुँचा हूँ। सभी में बहुत उमंग उत्साह है क्योंकि ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
1: और आइए अब सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन छाजेड़ क्या कहती हैं योग के संबंध में।
5: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे भारत के, पूरे विश्व में योग दिवस का जोरदार जोरों शोरों से चल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी, करे योग रहे निरोग, ये मैसेज देना चाहूँगी। तो करे योग रहे निरोग तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे।
1: योग करने आए लोगों में उत्साह देखने को मिला। आप भी सुनिए क्या कहते हैं योग के संबंध में ये योगाचारी।
6: संतोषानंद, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि योग एक शरीर के, राष्ट्र की विभूति का अंग है। जो योग तो आधार के बिना स्तंभता नहीं होती।
7: मेरा नाम शिवरतन बिश्नोई है, मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ, और आज 12वां योग दिवस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी एक साथ मिलकर योग दिवस मनाने जा रहे हैं। आज माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी साहब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हम साथ में मिलकर एक अच्छा संदेश देंगे।
8: मेरा नाम देवी प्रकाश शर्मा, और योग बचपन से एथलेटिक जिमनास्टिक ये मेरी रही, उसके बाद में मैं ये सामाजिक प्रतिक्रिया में समाज की बराबरी करने के लिए रात दिन एक दिन करता रहा, उसके बाद में योग में लगा मैं। और मेरा ये मानना है कि अगर योग आदमी करेगा सारे रोग दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे ये खुद का मतलब विवेक पे सोचने की बात है, और करके देख ले आदमी।
1: कार्यक्रम के अंत में रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने योग संकल्प दिलाया।
9: मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपने मन को संतुलित रखूंगा। इसी में मेरा

0: आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः,
2: सर्वे सन्तु निरामया।

0: कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
1: इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह स्थानीय डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में, जहां 6000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और पूरे विश्व को योग की महत्ता और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। रिपोर्ट के संयोजक थे अमित सिंह, प्रस्तुति थी रेवंत राम लेघा की, तकनीकी सहयोग था विजयदीप, मुकुल भटनागर और पुरुषोत्तम का, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कर्ण सिंह स्टेडियम बीकानेर में जिला स्तरीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर था श्री भाईश उपाध्याय का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन था श्री अमित सिंह का। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और उसके उपरांत 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल के लोकार्पण सहित कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोच टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने 41 छोटे और मध्यम स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार और 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि जयपुर शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए मेगा कोच टर्मिनल का निर्माण किया गया है। यहाँ एक महीने में करीब 450 रेलगाड़ियाँ मेंटेन हो सकेंगी, जिनमें आधुनिक गाड़ियाँ भी शामिल है।
1: जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर

0: करीब 450 गाड़ियां यहाँ पे मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की गई है, और बहुत ही मॉडर्न व्यवस्था की गई है, जिससे कि आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके, LHB के कोचेस, इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के निवासियों को आज मिली रेल यात्री सुविधाओं से काफी फायदा होगा।
2: मेगा कोचिंग खातीपुरा तथा तो विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि उनको ट्रेन बदलती थी, काफी परेशानी होती थी, और मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे राजस्थान को जोड़ने का काम इस ट्रेन के माध्यम से होगा।
1: रेल मंत्री श्री वैष्णव ने आज बीकानेर से जयपुर निरीक्षण के दौरान सीकर स्टेशन पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के साथ चर्चा की। उन्होंने सुंदरपुरा स्टेशन के निर्माण कार्य की मंजूरी और जल्द कार्य शुरू होने के बारे में जानकारी दी। इस स्टेशन के निर्माण से खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका आवागमन आसान हो जाएगा। इससे पहले बीकानेर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री ने बीकानेर से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क पहुंचने से न केवल क्षेत्र के लोगों को रेल सेवाएं मिलेंगी, बल्कि ये परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज लद्दाख के लेह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण समाज के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर के SMS के इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयुष मंत्रालय की ओर से जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी शामिल हुए। सिरोही के आबूराज में आयोजित हुए सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है, बल्कि विश्व को जोड़ने का भी काम करता है। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। वहीं राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी और आम लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया। सवाईमाधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से योगाभ्यास, योग संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पाली में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम लाखोटिया उद्यान में आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि योग हमारे मन, शरीर और आत्मा की एकता से जुड़ा है। ये हर उम्र में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक

0: मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है ताकि लोग लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ रह सके। आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आरोग्य महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग एक दिवस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब स्वास्थ्य के लिए एक आंदोलन बन चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबूराज के पर्यटन आध्यात्मिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के अनुसार सर्वांगीण विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विकास कार्यों को समन्वय के साथ समय पर पूरा करने और संभागीय आयुक्त तथा मुख्य सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा आज सिरोही जिले के आबूराज में आबू पर्वत विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबूराज में शहरी विकास, सड़क, पार्किंग, आवागमन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों का आगमन हो। उन्होंने कहा कि विवेकानंद पार्क और गुरु शिखर का सौंदर्यकरण, अबूरदा माता मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर के विकास कार्यों, ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने और भारत माता नमन स्थल को नमो उद्यान के रूप में विकसित करने सहित विभिन्न विकास कार्यों से आबूराज इको फ्रेंडली बन सकेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस बार विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र से ही प्रवेश दिया गया। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जयपुर के 103 परीक्षा केंद्रों पर 37,108 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बार अभ्यर्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। इससे परीक्षा अवधि 180 मिनट से बढ़कर 195 मिनट हो गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहे। इससे पहले परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए की प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित पत्र पूरी तरह फर्जी है। इकाई ने बताया कि मुद्रा एक पुनर्वित्त एजेंसी है और ये व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल के लोकार्पण सहित कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश के 5,000

0: 1000 से अधिक केंद्रों और विदेश की 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जसवंत सिंह डूडी ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साह के साथ सामूहिक योगाभ्यास करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान योग भी वोट भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच योगाभ्यास के बाद लोगों को मतदाता पंजीकरण और अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने रेतीले धोरों पर योगाभ्यास करते हुए आमजन को स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र दाता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर किसानों ने प्रधानमंत्री की ओर से जारी की गई सम्मान निधि की राशि का स्वागत करते हुए इसे खेती बाड़ी के लिए उपयोगी और मददगार बताया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरा होने के अवसर पर बाड़मेर जिले में सरहदी गांवों और दूर दराज की ढाणियों की महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं ने इन शिविरों में हिस्सा लेकर विशेषज्ञ परामर्श और स्वास्थ्य जांच सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित जांच, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और परिवार कल्याण संबंधी उपयोगी जानकारियां दी गईं। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन दिनों जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। आगामी 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों का समय सवेरे 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। शिविर में आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाड़मेर में पिछले दिनों नारी चौपाल का आयोजन किया गया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित नारी चौपाल में महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। पिछले दिनों जिले के जसदेर तालाब से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब की पूजा अर्चना की गई, साथ ही जल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। पशुपालन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, ग्राम पंचायत रानीवास और लूणु खुर्द में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। अभियान के तहत ग्राम पंचायत मंगले की बेरी में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 साल पूरा होने के अवसर पर बीते दिनों बाड़मेर में आकाशवाणी परिसर में लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान मोरचंग, भपंग, खड़ताल की जुगलबंदी और भवाई नृत्य ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाड़मेर जिले में शिव इलाके में झापली कला गांव के रहने वाले ख्याति प्राप्त लोक कलाकार समंदर खां मांगणियार को पिछले दिनों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें लोक संगीत की परंपरागत मांड गायन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले वाटर रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का अवलोकन कर प्रगति की समीक्षा की। इसी के साथ बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेशे सिंझा भगतरा प्रादेशिक समाचार।

0: पहली खास समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल समेत कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे देश विदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम भीया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो योग मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है। प्रधानमंत्री कोलकाता में देश में बनया नौसेना रा 3 पोत देश ने सौंपया। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश रा 5,032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माथे करड़ी हिफाजत रे बीच है पूरी हुई। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर रा खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ने रवाना करया। साथ ही वणा खातीपुरा में मेगा कोच टर्मिनल रो उद्घाटन करियो। ई मौके रेल मंत्री 41 छोटा और मझला स्टेशन माथे नुआ प्लेटफार्म पसारा और 16 स्टेशन माथे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली रो लोकार्पण करियो। कार्यक्रम पहला मीडियाओं बतल में श्री वैष्णव कहो कि जयपुर शहरी जरूरतों ने देखता मेगा कोच टर्मिनल बनाई जो है। अठे एक महीना में कोई 450 रेलगाड़ियों रो रख रखाव वह सकेला जिन में आधुनिक गाड़ियां ही भीड़ी है।
1: जयपुर शहर के रिक्वायरमेंट को देखते हुए खातीपुरा में मेगा टर्मिनल बनाया गया है, जिससे कि महीने की एक सब्सटेंशियल नंबर करीब करीब 450 गाड़ियां यहाँ पे मेंटेन हो सके वैसी व्यवस्था की गई है और बहुत ही मॉडर्न व्यवस्था की गई है, जिससे कि आज की जो आधुनिक गाड़ियां हैं वंदे भारत अमृत भारत इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके। LHB के कोचेस इन सब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी यहाँ पर हो सके।
0: ई मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री आपरा भाषण में कहो के राजस्थान रा रहवासिया ने आज मिली रेल यात्री सुविधाओं में घणो फायदो वेला।
2: मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा तथा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि उनको ट्रेन बदलती थी काफी परेशानी होती थी और मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे राजस्थान को जोड़ने का काम इस ट्रेन के माध्यम से होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बीकानेर जयपुर निरीक्षण दौरान सीकर स्टेशन माथे सुंदरपुरा स्टेशन बनाई चुनाई काम री मंजूरी दी और बेगा बेगा काम शुरू करने री जानकारी दी। वणा कहो कि इन स्टेशन रे बनानु खाटू श्याम जी आने वाला श्रद्धालुओं ने घणो आराम मिलेला और वारो आवनो जावनो ही सरल वे जायला। इनू पहला बीकानेर स्टेशन माथे विया कार्यक्रम में रेल मंत्री बीकानेर लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। आ रेल गुजरात राजस्थान रा सैलानी ठोड़ा रे बीच सीधी रेल जुड़ाव मुहैया करावेला। ई मौके रेल मंत्री कहो के सरहदी हल्का में रेल नेटवर्क पुगणु नी फगत हल्का ने रेल सेवावां मिलेला बल्कि आ परियोजना सामरिक निजरू ही महत्व वेला। श्री वैष्णव बतायो के राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपयों 32 रेल परियोजनावां माथे काम चाले। ई दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद रिया। दुनिया भर में आज 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनायो जावे। इस साल रो मुद्दो है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश रा जबलपुर में योगाभ्यास में भेड़ी हुई। ई मौके राष्ट्रपति कहो कि योग भारत री महान परंपरा री निशानी है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन रो मार्ग दिखावे है। वणा लोगों योग ने आपरा रोज रा कामा ने रो हिस्सो बनावण री अर्ज करी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन लद्दाख रा लेह माए विया जलसा माए हिस्सो लियो। ई मौके वणा लोगों स्वस्थ सुखी और शांतिपूर्ण समाज सारू योग ने आपरा जीवन रो अभिन्न अंग बनावण री अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा खास कार्यक्रम पश्चिम बंगाल री राजधानी कोलकाता माए रेड रोड माथे वियो, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास री अगुवाई करता कहो के सगला रे जीवन में योग एक नवी ऊर्जा रो संचार करे है। ई दौरान प्रधानमंत्री कहो के योग मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए

0: इसका बोझ।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद परिसर में भेड़ा योगाभ्यास में हिस्सो लियो वठे प्रदेश में सगड़ा जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत शैक्षणिक संस्थान और आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा में योग कार्यक्रम विया जयपुर SMS रा इंडोर स्टेडियम में विया कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा समेत कई मान्यता लोग मौजूद रिया। सिरोईरा आबूराज में विया भेड़ा योगाभ्यास में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा योग करियो। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि योग नी फगत शरीर और मन ने जोड़े है बल्कि दुनिया ने जोड़न रो काम करे है। बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव योग शिविर में योगाभ्यास करियो। ई दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाली मौजूद रिया। आयुष मंत्रालय कानियो जयपुरा जंतर मंत्र माथे भेड़ो योगाभ्यास करीजो इनमें 18 देशों रा पड़ेसर भेड़ा विया। बीकानेर रा आदर्श स्टेडियम में जिला थरो कार्यक्रम यो वठे राजसमंद झील री नौ चौकी पाल माथे विया योगाभ्यास कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी और लोगा उमावरे साथ हिस्सो लियो। सवाई माधोपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो कानियो योगाभ्यास योग संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रो आयोजन करीजियो। पाली में जिला थरो भेड़ो योग कार्यक्रम नाकोटिया उद्यान में वियो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो है कि योग आपारा मन शरीर और आत्मारी एकताओं जुड़ियो है और वो हर उम्र में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ने चोखो बनावन माथे केंद्रित है जिणु लोग लंबा भगतताएं सक्रिय और स्वस्थ रह सके। जयपुर रा बिड़ला सभागार में आरोग्य महोत्सव में बोलता वणा कहो कि योग एक दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब स्वास्थ्य सारू एक आंदोलन बन चुको है। वणा योग ने जीवन री आदत बनावन री अरज करी। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता देश में बनिया भारतीय नौसेना रा तीन पोत INS दूनागिरी INS संशोधक और INS अग्रह ने देश ने सौंपया। ई मौके वे कहो कि भारत जहाज बनाउन रा हल्का में नू सोच रे साथ आगे बढ़ रियो है। प्रधानमंत्री कहो कि केंद्र सरकार अजय रा साला में कई नीतिगत सुधार करिया है और घरू बनाउन रा बूता ने बधाउन सारू खास कदम उठाई जिया है।
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: नौसेना मुजब आपोता में 75% बत्ती देसी चीजा ने काम में ले लीजी है। प्रधानमंत्री कहो के जहाज बनावण और मरम्मत ने राष्ट्रीय मिशन रा रूप में विकसित करियो जावे। वणा कहो के समुद्री हल्का में आउन वाला भगत में लाखों रोजगार बनाया जा सके है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सिरोईरा आबूराज ने सैलानी आध्यात्मिक और पर्यावरण री खासियत मुजब संपूर्ण विकास रो ब्लू प्रिंट तैयार करण सारू हुकम दिया है। वणा विकास कामा ने तालमेल रे साथ भगत सर पूरा करण और संभागीय आयुक्त और मुख्य सचिव ने बरोबर मॉनिटरिंग करण रा निर्देश दिया। श्री शर्मा आज आबू पर्वत विकास समिति री मीटिंग री सदारत करता कहो कि आबूराज में शहरी विकास सड़क पार्किंग आवन जावन सारू विश्व थरी सुविधा विकसित करी जावे जीणु बत्तियों बत्ती सैलानी आ सके। वणा कहो के विवेकानंद पार्क और गुरु शिखर रा सौंदर्यकरण अर्बुदा माता मिंदर और दत्तात्रेय मिंदर रा विकास कामा ईवी वाहना ने बधावो देवण और भारत माता नमन स्थल ने नमो उद्यान रा रूप में विकसित करण समेत न्यारा न्यारा कामाऊ आबूराज इको फ्रेंडली बन सकेला। मुख्यमंत्री आज गुजरात रा माँ अंबाजी शक्तिपीठ माए दर्शन करने प्रदेश री खुशहाली री कामना करी। ई मौके खबर नविसाऊ बतलमाए वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री कोशिश रे कारण ही आज विदेश माए योग दिवस पूरा उमावरे साथ मनाई जो। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा नीट UG पुनर्परीक्षा आज करड़ी हिफाजत रे बीच है। देश रा 5,032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माते भी 22,79,032 पड़ेसर परीक्षा में भेड़ा विया। ई बार पड़ेसरा ने नुआ प्रवेश पत्र और मान्यता वाला फोटो पहचान पत्र ही प्रवेश दीजियो। NTA मुजब नीट UG पुनर्परीक्षा देश रा 551 शहर और 14 विदेशी शहर में आई भी अठीने प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा सारू 25 जिला में 577 परीक्षा केंद्र बनाई गया। जयपुर रा 103 परीक्षा केंद्र माथे कुल 37,108 पड़ेसर भेड़ा विया। अबे मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का में आथोनी विक्षोभ रा असर तेज हवा रे साथ बिरकावी। जयपुर में

0: आज सवारा हल्की बिरखा भी वठे श्री गंगानगर जिला में तेज बिरखा रे साथ कुछ थोड़ा ओला ही पड़िया। कोटा में दोपहर पछे तेज अंधड़ रे साथ मे बरसियो। मौसम महकमो आथोणी विक्षोभरा असरू आपता 24 घंटा में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कुछ थोड़ा रह साथ ही शेखावाटी हल्का में मेघ गर्जन और आंधी रह साथ मझलाऊ तेज बिरखा होने री आस जताई है। आवती 22-25 जून ताई आंधी बारिश श्री गतिविधियां चालता रहने री आस जताई है। आज विश्व ऊंट दिवस है। ई मौके केंद्रीय संस्कृति और सैलानी महकमा रा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देशवासियों ने शुभकामना दी है। सोशल मीडिया माथे आपरा संदेश में श्री शेखावत कहो के ऊंट फगत आजीविका रो साधन नहीं है बल्कि राजस्थान और गुजरात री संस्कृति और रीत री निशानी है। वरना ऊंट ने मरुस्थल रो जहाज बतावता इनने बचावन री अर्जी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवती 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। ई सारू सुनन वाला आपरा सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 माथे भेज सके है। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही विचार भेजा जा सके है। ए सुझाव 26 जून तई भेजा जा सके है। मैं अब आखिर में एक खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस और लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेल ने हरी झंडी दिखाई। खातीपुरा मेगा कोच टर्मिनल समेत कई रेल सुविधाओं की सौगात दी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माथे देश विदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो योग मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य रा मार्ग ने दिखावे है। प्रधानमंत्री कोलकाता में देश में बनया नौसेना रा 3 पोत देश ने सौंपिया। और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा देश रा 5032 केंद्र और विदेश रा 14 केंद्र माथे करडी हिफाजत रे बीच पूरी हुई। इन साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मारो अगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। ये क्रिकेट कमेंट्री हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: इसके अपने ICC रैंकिंग में है। मार्जना कैप गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 123 मैच उन्होंने खेले हैं, 97 विकेट्स उनके नाम पर हैं और सामना करती हुई भारतीय बल्लेबाज एक

0: समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर

0: पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के

378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 MHz पर रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना

व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Laura Simai was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised for their exceptional performance throughout the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम व्यू 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात की 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। अगली सभा में कल सवेरे 5:53 पर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।